नशा नशा सा है, बोलिए ना बोलिए सब सुना।

यादों के सफर का शुरुआत किया। दो संगीत फिल्म दिल देख देखो से निकाली हुई यह संगीत की झंकार आपके साथ फिरोज खान।

यादों के सफर के अंतर्गत आगे चल के आप सुनेंगे हमारे खास मेहमान महेंद्र कपूर से गाए हुए कुछ चुने हुए संगीत। यह है संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक आपका साथ फिरोज खान।

बिखरी तेरी जो जुल्फ घटा याद आ गई, बिखरी तेरी जो जुल्फ घटा याद आ गई, फिर मैं कदे की मस्त फिजा याद आ गई।

0: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनकार।
1: यह है संगीत की झनकार और आपके साथ फिरोज खान, हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर यादों का सफर, आपका सफर कर रहते हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्मों से निकली हुई। और आपको याद रहे 5 से लेकर 7 बजे तक हर रविवार को शशि आपके साथ देती है कुछ खास प्रोग्राम लेकर, वेरी एक्सपीरियंस अनाउंसर प्रेजेंटर फ्रॉम साउथ पैसिफिक। शशि जॉइंस मी राइट नाउ टू टेल यू ऑल अबाउट हर प्रोग्राम। शशि, गुड मॉर्निंग टू यू।
2: नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग आपको भी फिरोज जी, और आपको तथा संगीत की झनकार की जितने भी लिसनर्स है सभी को मैं कहती हूँ नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैमचो और सत श्री अकाल, कैसे हो आप सभी।
1: हाउ आई एम श्योर दे विल टेल यू इन योर प्रोग्राम, दे माइट गिव यू अ कॉल, आई डोंट नो, बट टेल मी, बड़े शौक से आप प्रोग्राम को तैयार करते हैं, एंड व्हाट कैन द लिसनर्स एक्सपेक्ट दिस मॉर्निंग।
2: फिरोज जी, मैं एक हरा भरा कार्यक्रम लेकर आने की हर हफ्ते कोशिश करती हूँ, एंड खास तौर से जो गीत संगीत होते हैं हमारे कार्यक्रम में, मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे लिसनर्स जो होते हैं वो कई एज ग्रुप के होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सभी को खुश करने के लिए, मगर खास तौर से नए और पुराने गीतों का संगम, सदाबहार गीत लेकर आती हूँ, एंड बीच में गजल्स भी रखती हूँ क्योंकि गजल के आशिक भी बहुत होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सभी को खुश करूँ। और जी हाँ,
1: दिस ओके टू समराइज, सदाबहार गीत विद शशि फ्रॉम 5 to 7 एवरी संडे, दैट्स करेक्ट राइट?
2: यस दैट्स राइट, जी हाँ, हर रविवार को एक रंगीन शाम आपके नाम। और इसके साथ साथ फिरोज जी, मैं पारिवारिक विषय भी लेकर आती हूँ, ये एक सेगमेंट है जिसमें कई तरह की अवेयरनेस में बिल्ड करने की कोशिश करती हूँ लोगों में, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, फैमिली इश्यूज हो, कुछ भी हो, तो ये चंद मिनटों के लिए होती है। और इससे क्या होता है कि हमारे जो कई उम्र के, कई पीढ़ी के लोग जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं इस समय, ये प्राइम टाइम होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अवेयरनेस बिल्ड करूं ताकि लोगों के जीवन में जरा सा बदलाव करने का अवसर प्राप्त हो जाए, क्योंकि सभी कुछ हम जानते हैं अपने जीवन के बारे में, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई और आपको कहता है तो वो ज्यादा समझ में आती है हमारी, तो वो एक सेगमेंट होती है। प्लस उसके साथ साथ फिरोज जी, एक और सेगमेंट है जिसे मैं कहती हूँ छोटी छोटी बातें अपनों की, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, तो ये भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर ही आप कह सकते हो, मगर ये मैं अन्य लोगों को इंट्रोड्यूस करती हूँ जो ऐसे बातें बताते हैं लोगों के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया सेगमेंट ये भी है, तो ये चंद सेकंड्स के लिए होती हैं। प्लस मैं छोटे बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं या हिंदी समझ लेते हैं मगर बोल नहीं पाते हैं, तो मैं हर हफ्ते कोशिश करती हूँ एक इंग्लिश शब्द लेकर आती हूँ, और मैं उनसे कहती हूँ कि आप इसके जो हिंदी वर्ड है वो ढूंढ कर रखिए, सो ऐसे जैसे ताकि उनमें थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो, यही मैं, हमारी कोशिश यही रहती है।
1: जी हाँ,
2: और फिर
1: सॉरी शशि, मैं प्रोग्राम के विषय में काफी और बात करेंगे नेक्स्ट वीक, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम में इस वक्त हर वक्त एक दो मिनट के लिए शामिल होकर अपने प्रोग्राम के विषय में बताएं।
2: हाँ जी, सो वेलिंगटन से हम, फिरोज जी, वेलिंगटन में धूप निकली हुई है, सूर्य जी मुस्कुरा रहे हैं हम पर यहाँ पर, एंड वैसे वहाँ भी है मौसम, सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ एक रंगीन शाम आपके नाम, बहुत दूर से मैं आपके साथ जुड़ती हूँ, तो उम्मीद है कि हमारे आपके जो लिसनर्स है वो भी जुड़ जाए और इस कार्यक्रम से कुछ लुत्फ भी उठाएं और कुछ उनको उनके लिए भी जो अवेयरनेस है वो मैं उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करती हूँ। सो इसी तरह वो हमारे साथ जुड़ जाए यही मैं उम्मीद करती हूँ। और आपको शुक्रिया, आपको और मुझे जो अवसर मिला है रेडियो ब्रिजवानी के साथ जुड़ने के लिए, आप जैसे अनाउंसर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रेडियो ब्रिजवानी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ।
1: जी हाँ शशि, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू जॉइन मी एवरी संडे अबाउट दिस टाइम। श्रोताओं को बताएं आपके प्रोग्राम जो हर वक्त 5 से लेकर 7 बजे तक यहाँ रेडियो 71 में प्रसारित होती है। मैं जाते जाते एक बात आपसे बता दूं, आपको आई डोंट नो आल जोग योर मेमोरी, आपको याद है करीबन 25 इयर्स अगो आपने हमारे साथ बैठकर यहाँ रेडियो 4EB में प्रोग्राम किया था कुछ दिन।
2: हाँ जी, मुझे बिल्कुल याद, कैसे मैं भूल सकती हूँ।
1: अच्छा, उसके विषय में काफी वक्त हो गया है। हमारा एक कॉल साइन है संगीत के जानकार के, संगीत के जानकार का कॉल साइन है हमारा, संगीत की जानकार बातों की जानकार नहीं, मोर म्यूजिक लेस टॉक। तो इसलिए आई सेव द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड अबाउट आवर एक्सपीरियंस। मैं ये भी जानता हूं कि आप बहुत एक्सपीरियंस अनाउंसर है, मैं तो सिर्फ सुखियाना हूं, बोलता हूं स्त्रीलिंग पुल्लिंग और प्रोनाउंसिएशन खिचड़ी करके प्रेजेंट करता हूं प्रोग्राम, फिर भी लोग पसंद करते हैं तो आई एम हैप्पी। तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे शशि, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू योर प्रोग्राम बिटवीन 5 and 7 टुनाइट। दैट्स द टाइम आई डू माय प्रिपरेशन फॉर माय कुकिंग, आई लव कुकिंग, सो दैट्स व्हेन आई डू माय प्रेप फ्रॉम 5 o'clock और सो।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी बातें सर आंखों पर। और चलो चलते हैं आगे, अगले सप्ताह नहीं,
1: श्रोताओं से तो आप मिलेंगे आज सुबह शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक, लेकिन हमारा और आपका मुलाकात बातचीत होगी अगले सप्ताह करीबन इस वक्त संगीत की जानकार पर 79 ब्रिस्बेन। तो ये थे हमारे गेस्ट संगीत की जानकार, हैव अ गुड डे शशि, सॉरी टू कट यू ऑफ, नो
2: थैंक यू, आपको भी
1: ओके, थैंक यू, गुड बाय। ये थे शशि जो हमारे 79 ब्रिस्बेन के नए अनाउंसर है, हर शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक। और जाते जाते एक और बात मैं आपको बता दूं कि हर शाम को 2 से लेकर 5 बजे तक सू आपके रिक्वेस्ट और फरमाइश पेश करते हैं, लेकिन आज शाम को सू नहीं रहेगी, शी वोंट बी देयर फ्रॉम 2 to 5 टुडे, सो रिमेम्बर सू वोंट बी देयर, सो शी वोंट बी एबल टू प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट, मेक श्योर यू हैव ऑल योर रिक्वेस्ट एंड डेडिकेशन रेडी फॉर सू नेक्स्ट संडे फ्रॉम 2 to 5। ये है संगीत की जानकार और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। चलो प्रोग्राम को जारी रखते हुए एक बार फिर आपके सफर कराते हैं यादों के साथ। जी हाँ, संगीत के जनका में आप सुन रहे हैं यादों का सफर। अगले गीत के बाद हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो हम पेश करेंगे आपके लिए स्पेशल सेगमेंट ऑन महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर हमारे खास मेहमान छोटी ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले जाइएगा मत।

0: हमारे स्टूडियो में करीबन 2 मिनट हो चुके हैं 10:30 बजकर। अभी छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपके लिए पेश करेंगे यादों का सफर, जारी रखेंगे यादों का सफर और उसमें आप खास मेहमान महेंद्र कपूर। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी कमर्शियल।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनका।
5: नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें बीत जाती हैं लेकिन बाकी रहती है सिर्फ
6: यादें। यादें
7: गीतों में मन की भावनाएं व्यक्त करते हुए संगीत के रह गुजर पर, यादों के सफर पर। हाँ, यादें कुछ भूली कुछ बिसरी।
0: और आज यादों के सफर के अंतर्गत हम आपके लिए पेश करेंगे महेंद्र कपूर से गाए हुए कुछ चुने हुए संगीत। वास्तव में महेंद्र कपूर का शुरुआत हिंदी फिल्मों में वी शंदराम की फिल्म नवरंग से हुआ था।

लाख बलाए सर पे छूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जान छूट जाए, हाथ से मेरा हाथ न छूटे। मुड़ के तकना ठीक नहीं, मुड़ के तकना

वक्त लकीरें खींचता है इंसानी चेहरों पर, बीते समय पर वक्त चला जाता है। ये लकीरें ठिठक जाती हैं, छूट जाती हैं, देर तक अपने होने का एहसास जगाती। इन लकीरों पर चंद नई लकीरें उभरती हैं, कुछ पहले से और ज्यादा साफ और अलग। ये अपनी अलग छाप या पहचान या छोड़ जाती हैं यादें।

तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवा पराया।

0: यह है संगीत की झनकार और आपके साथ फिरोज खान। संगीत की झनकार इस स्टेशन पर हर रविवार की सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक, और संगीत की झनकार में यादों का सफर के अंतर्गत हमारे खास मेहमान महेंद्र कपूर।
1: वक्त लकीरें खींचता है इंसानी चेहरों पर, बीते समय पर वक्त चला जाता है, ये लकीरें ठिठक जाती हैं, छूट जाती हैं, देर तक अपने होने का एहसास जगाती। इन लकीरों पर चंद नई लकीरें उभरती हैं, कुछ पहले से और ज्यादा साफ और अलग। ये अपनी अलग छाप या पहचान या छोड़ जाती हैं यादें।
2: यादों का सफर
0: बलखाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिलकर गले, नदिया का पानी दरिया से मिलकर

महफिल महफिल जाकर देखा हर दिल में समा कर देखा, महफिल महफिल जाकर देखा हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा, दिल को कहीं चैन ना मिला। मैं तो दुनिया में प्यारे

0: यह है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
1: अपना तो बना कर देखो।
0: जी हाँ, अपना तो बना कर देखो। वी प्रेजेंट, यू डिसाइड। यू फोन अस ऑन 3279701। वी लिसन टू यू बिकॉज यू लिसन टू अस।
2: सुनी तारीख रातें, हवाओं का शोर, गरम लूसी भरी हवाएं, कभी कभी माहौल को तोड़ती गहरी जर्द आंधी, माँ का बार बार खांसना, घर की आंगन में बच्चों का शोर, दूर बाजार से आती रेडियो की आवाजें, कभी रफी, कभी लता, कभी मुकेश या तलत महमूद, तो कभी गीता दत्त, उनकी हसीन नगमों की ना खत्म होने वाली अबशार, जो जहन की नाजुक पर्दों को झिलमिलाती रहती है। जी हाँ, यही तो है यादों का सफर।

मोहब्बत बेरुखी से भड़केगी तो क्या जाने, मोहब्बत बेरुखी से भड़केगी तो क्या जाने, तबीयत इस अदा पे फड़केगी तो क्या जाने, ओ क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है।

0: 24 घंटा आपका साथ देता है रेडियो ब्रिजवानी द इंडियन रिदम फ्रॉम डाउन अंडर।
1: कभी तो रुलाए कभी कभी चैन दे तो सताए कभी हमें करते बेखबर
0: रेडियो ब्रिजवानी।

0: दिन रात सुबह शाम चलिए 1701 के साथ।
1: हमारे संगे तुम ना चलो कि नहीं,
2: हमारे संगे चलियो कि नहीं।
3: मौसम है खुशनुमा, साथ हो रही है सहेली नूरजहां। आदाब, नमस्कार।
4: फिरोज खान भी हाजिरे खिदमत हूँ आप सबको, मेरा प्यार भरा नमस्ते, आदाब, अस्सलामुअलैकुम और सत श्री अकाल।
3: आज कुछ ऐसा मूड बना है कि सबसे पहले पंजाबी की तारीफ हो जाए, वो भी डंके की चोट पर।
4: लेकिन टाइटल तो कहता है चोरी चोरी चुपके चुपके।
3: डायरेक्टर्स अब्बास मस्तान की कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट चोरी चोरी चुपके का मचलता हुआ फड़कता हुआ सहलान।
4: हिट्स ऑफ 90s संगीत की झंकार पर ऐसे गीत जो हिट परेड में

0: हाँ जी, प्रोग्राम का शुरुआत पंजाबी की तारीफ से सोनू निगम और जसविंदर नूरवाला की आवाजों में संगीत की झनकार पर।
1: फिलहाल हिट्स ऑफ 90s में अब शामिल कर रहे हैं एक रिश्ते को, तो पंजाबी की तारीफ सुन चुके, अब एक रिश्ता में मोहब्बत मोहब्बत को पुकार रही है। मेलोडियस कॉम्बो नदीम श्रवण के मीठे मधुर संगीत पर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें।

0: फिल्म फेयर अवार्ड और क्रिटिक्स अवार्ड की विजेता करिश्मा कपूर और उनके साथ अक्षय कुमार के लिए फिल्म एक रिश्ता में अलका याग्निक और साथ में उदित नारायण की आवाजें।
1: हिट्स ऑफ 90s, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुकी हो।
0: डेफिनेटली ये वो गीत है जो रेडियो नवतरंग में इतना लोकप्रिय हुआ और साथ में FM 96 और उसके सिस्टर स्टेशन BTFM में भी बजता है।
1: जी हाँ, जस्ट स्माइल अ लिटिल, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। शान की आवाज फिल्म।

0: सिंगिंग करियर की शुरुआत इसी गीत से हुई फिल्म प्यार में कभी कभी।
1: रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन, संस्कृति और समाचार। यह है संगीत की जानकार और आप सुन रहे हैं रीसेंट पास्ट हिट्स। हिट्स ऑफ 90s और रीसेंट पास्ट हिट्स के अंतर्गत इस बार नूर
0: और इस बार आ रहे हैं डेडली दत्त, संजय दत्त, और इनके सपने में एक कुड़ी आती है।

0: मेरा फेवरेट मेल सिंगर 1997 के बेस्ट प्लेयर सिंगर अभिजीत की आवाज फिल्म अभागी का गीत साजिद वाजिद के संगीत पर संगीत की झनकार पर हिट्स ऑफ 90s
1: घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा उसके घर में जाऊंगा सच कहता हूँ
0: बागी बागी
1: कसम
0: बागी
1: मैं चोरू उसे बनाऊंगा

0: संगीत की झनकार, सुर और ताल, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फिजी समाचार, भेंटवार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनकार।
1: फिलहाल हिट्स ऑफ 90s का सिलसिला जारी रखते हुए इस बार अमित कुमार की आवाज, वो भी सिलसिला है प्यार का में। लड़कियों से कुछ कहना चाहते हैं अमित कुमार।
2: संगीत की झनकार पर हिट्स ऑफ 90s।

0: मिक्स ऑफ 90s में भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार को फिल्म सिलसिला है प्यार का। संगीत की जानकार पर हिट्स ऑफ 90s ऐसे गीत जो हिट प्रेड में अपनी छाप छोड़ चुकी हो।
1: होंचो अर्जुन रामपाल और मिस एशिया पैसिफिक दिया मिर्जा, इनका दीवानापन यानी फिल्म दीवानापन का ये 16 नंबर शान की आवाज में।

0: हिट्स ऑफ 90s में अभी आप सुन रहे थे आजकल के भरते गायक शान की आवाज में फिल्म दीवानापन का एक गीत।
1: रेडियो वो जिसमें संगीत की झनकार हो, रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
2: और संगीत के जानकार को हम यही छोड़ रहे हैं, अगले रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक एक बार फिर हम आपकी खिदमत में संगीत की जानकार को लेकर यादों का सफर और हिट्स ऑफ 90s आपके लिए पेश करेंगे। तब तक के लिए आपके साथ ही फिरोज खान इजाजत दाते हैं, खुदा हाफिज।
3: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
5: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
6: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
5: ऐसा क्या खास है वहाँ?
6: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
5: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
6: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

जी मेरे आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मैं यहाँ से कहती हूँ नमस्कार, कैमचो, सात श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। एंड उम्मीद है कि आज का दिन अभी तक बहुत ही बढ़िया गई आपके लिए, और अब 2 घंटों का ये सफर, एक रंगीन शाम आपके नाम हमारे साथ, ठीक है? तो अब आप जो भी काम कर रहे हो बस करते ही रहिए, मगर रेडियो को फुल ब्लास्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं 2 घंटों तक आपका साथ देने के लिए आ चुकी हूँ। तो देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप तैयारी करके रखे हुए हो, मगर कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि क्या होगा, आज मैं अपने दोस्तों के साथ जुड़ पाऊंगी या नहीं जुड़ पाऊंगी। मगर देखिए, जब आपकी हौसला हो और आप के दिमाग में आप सोच कर बैठे हो कि नहीं नहीं आई बी ओके, आई विल डू इट, एंड सो आई हैव डन इट। सो चलो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। फिल्म लव यात्री से ली गई ये नगमा, सलमान खान की जीजा जी का ये पहला फिल्म, आयुष शर्मा उनके साथ वरीना हुसैन को आप पर्दे पर देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे तो देखिए, ये फिल्म बहुत ही बढ़िया थी।

चलो एक बहुत ही बढ़िया गीत के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत. और देखिए, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक ही होंगे. एंड मुझे पता है आज रविवार है और रविवार की शाम है, एंड ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे बच्चों के लिए, स्कूल जाने के लिए, अपने नौकरी पर टुमारो जाने के लिए, ये सभी आप कर रहे होंगे. मगर आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, एक हरा भरा कार्यक्रम है, नए और पुराने गीतों का संगम. कई ऐसे गाने हैं जिसे आप सदाबहार गाने कह सकते हैं और जो आपके डिफरेंट मूड्स और सेंटिमेंट्स को बाहर निकालेंगी. ठीक है, तो ये ऐसे सॉन्ग्स हैं हमारे पास, हमारे लिसनर्स भी कई हैं, तो हर उम्र के हैं, तो ऑब्वियसली मैं नए पुराने गीत सभी कुछ लेकर आई हूँ आपके लिए, और गजल भी लेकर आई हूँ. और यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके आपको आज के जो ये लम्हे हैं ना, आज के जो लम्हे हैं ये खास लम्हे हैं, सो इसके लिए मुबारक आपको. आप सो हर उम्र के हैं, तो ऑब्वियसली मैं नए पुराने गीत सभी कुछ लेकर आई हूँ आपके लिए, और गजल भी लेकर आई हूँ. और यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके आपको आज के जो ये लम्हे हैं ना, आज कि जो लम्हे हैं ये खास लम्हे हैं, सो इसके लिए मुबारक आपको. आंखों में बसे नए ख्वाब, मुबारक आप.

पसंद आए आपको ये गीत. एंड ये जैसे हमने कहा सुखविंदर सिंह की आवाजों में, आवाज के साथ सुनिधि चौहान की बहुत ही खूबसूरत आवाज. और अब हम चलते हैं एक और नगमा आपके लिए लेकर आए हैं, एंड ये भी उम्मीद है कि आपको पसंद आए.

हो रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर एक रंगीन शाम आपके नाम और मैं शशि जोखन आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और इस शाम को हम रंगीन बनाएंगे पूरे 7 बजे तक, ठीक है ना? ये वादा रहा। नए गीतों की बारी है।

0: बनके।
1: हाँ जी, क्या आप कभी किसी से मिले हो जो आपको ऐसा लगता है कि उनमें आपको रब दिखता है? कैसा ऐसा हुआ कभी आपके साथ? खैर, बोलते तो हैं सभी। चलो

हाँ जी, रब ने बना दी जोड़ी। अगर रब ने जोड़ी बनाई है तो ईश्वर करे कि आपकी जोड़ी बहुत ही खूबसूरत हो और आगे ऐसे ही चलता रहे आपकी जोड़ी। और अगर आज आपका एनिवर्सरी है तो खास तौर से मैं आप दोनों को इसमें शामिल करती हूँ। एंड मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी जोड़ी बस इसी तरह बनी रहे और आपकी जीवन हंसी खुशी से आगे बढ़ते रहे। तो चलो एक और गीत हम सुनाते हैं आपको इस बार। कहते हैं तुम हो तो सब बढ़िया है, तुम हो तो सब अच्छा है। अकेलापन बहुत बहुत खौफनाक होता है।

फिल्म सैयारा का ये नगमा आप सुन रहे थे। तुम हो तो सब कुछ अच्छा है। हाँ, तो जब कोई आपके साथ है तो उनके साथ आप बढ़िया ढंग से रहिए, ताकि आपको अकेलापन न महसूस करना पड़े। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने कहा, अकेलापन बहुत ही खौफनाक खौफनाक होती है, दर्दनाक होती है, सभी कुछ। ठीक है, सो संभाल कर रखिए जो भी आपके साथ है। ठीक है, चलो एक और गीत सुनते हैं। वैसे तो कहते हैं ना, सब कुछ बढ़िया है। कैसे है आपकी जीवन? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास नहीं है तो फर्स्ट क्लास बनाने की कोशिश जरूर कीजिए।

जी फिल्म कलंक से ली गई ये नगमा। पर्दे पर वरुण धवन, आलिया भट्ट, कियारा पर और इसके साथ साथ एक और भी बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस इसमें साथ काम की। अगर आप ही सोचिए, मुझे पता है आप ये फिल्म देख चुके होंगे। खैर एनीवे, इसे हम यहीं पर छोड़ते हैं, आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप जाकर पता लगाइए वो कौन है। अगर नहीं पता चले तो मैं बताऊंगी बाद में। मगर देखिए आज

6 बजे के बाद पारिवारिक विषय लेकर आने वाली हूँ। और वैसे तो आप सभी जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारे सेहत का ख्याल रखना कितना इम्पोर्टेंट है ना, ये हम सभी जानते हैं जैसे हमने कहा, मगर हम में से कितने लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो ये तो आप कितना ध्यान रखते हो ये तो आप ही जानते हो, मगर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे शरीर के लिए मिनरल्स विटामिन्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए प्रोटीन है ना, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, यानी न्यूट्रिएंट है, जिसे अक्सर जीवन का आधार या बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। और ये शरीर के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है और विभिन्न कार्यों के लिए ये आवश्यक भी है। तो आज 6 बजे के बाद पारिवारिक विषय में हम जानेंगे कि क्यों प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, लाभदायक है यानी, और इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि क्या खाएं और सेवन करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इसे हम 6 बजे के बाद पेश करेंगे और फिर बीच में हम लेकर आएंगे आपके लिए छोटी छोटी बातें अपनों की, और उसके बारे में कुछ चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो आप सुनिए ये नगमा।

हाँ जी, आप सुन रहे थे फिल्म देवदास का नगमा। और फिल्म देवदास, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि फिल्म देवदास एक्चुअली बंगाली कल्चर पर बेस्ड कहानी थी, और इस फिल्म में बिल्कुल जो का पहनावा है सब कुछ बंगाली थी। सो भारत में तो आप सभी जानते हैं इतना इतने सारे कल्चर्स हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ होते हैं, उनके बोलने के तरीका, उनके ओढ़ने पहने खाने पीने का बहुत ही अमेजिंग। अगर आप भारत नहीं गए हो अभी तक, तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल आप जाइए, एंड एक टाइम तो अपने लाइफ में जाकर देखने ही देखनी है कि कितनी खूबसूरत जगह है। और चाहे जितना भी दिन आप वहाँ रह लो, आप कभी उस देश को पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक्चुअली मैं टूर ले जाती हूँ इंडिया, एंड इंडिया के साथ साथ कुछ और देश भी ले जाती हूँ। खास तौर से लेडीज़ हमारे साथ जाती हैं, कई उम्र के होती हैं, 50 से लेकर 80 तक की लेडीज़ मेरे साथ गई हुई हैं, और उनकी देख रेख बहुत ही अच्छी तरह करती हूँ। सो एनीवे, दैट वाज दैट। तो भारत की बात हो रही है तो बहुत ही खुशखबरी है, खास तौर से न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जुलाई महीने में न्यूजीलैंड का आधिकारिक दौरे पर रहेंगे, यहाँ आएंगे, और ऐसा कहा गया है। अभी कॉन्फर्मेशन हो चुकी है, मगर तैयारी हो रही है, और ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस दौरान ओकलैंड में एक कम्युनिटी कार्यक्रम भी शामिल होने को है, और जहां पर हमारे कम्युनिटी के लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और कुछ लोग जो बहुत ही फॉर्चुनेट होंगे उनसे उनकी मुलाकात भी होगी। तो ये यात्रा 2025 में दोनों देशों के बीच हुए, और ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर, यानी जो FTA जिसे कहते हैं, इसके बाद हुई है। तो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ न्यूजीलैंड से गए हुए थे इंडिया, सो पूरे कॉन्टिंजेंट के साथ। सो उस समय ये सब हुए हैं। तो मुक्त बिंदु क्या होगा, मुख्य जो होगा, क्यों यहाँ पर क्या होगा, इस यात्रा का जो उद्देश्य है, आप सोच रहे होंगे कि क्या है। तो खास तौर से बायलेटरल संबंधों को और आर्थिक जुड़ाव और रणनीति, जैसे हमने कहा, सहयोग को और गहरा करना होगा। और न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन, जैसे हमने कहा, 2025 में भारत के दौरे के बाद PM मोदी जी को उस समय आमंत्रित किए थे, और इस दौरे में व्यापारिक समझौते और रक्षा सुरक्षा सहयोग पर भी बातचीत होने की संभावना है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर में भी आप देखते हैं कि क्या क्या कैसा माहौल बना हुआ है, लोगों की जिंदगी कैसे तबाह हो रही है, एंड इसीलिए कि हमारे जो इस और हम रहते हैं ना, इसको भी सुरक्षा, जो दुनिया के इस पार्ट में हम जो रहते हैं, इस को संभालना कैसे है, तो ये दोनों प्रधानमंत्री बात करेंगे एक साथ मिलकर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब यहाँ पर शांति और अमन चयन होगी तो हम सभी अच्छी तरह रह पाएंगे, अच्छी तरह जी पाएंगे ना। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, एंड ये हमारे ऊपर भी है किस तरह से हम जिस देश में रहते हैं उस देश को संभाल कर रखते हैं। सो ये इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ मैं इस दौरान आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2023 में मोदी जी ऑस्ट्रेलिया का दौरा किए थे, शायद आपको पता होगा। 2023 में मई महीने में कल का दिन था वो, मोदी जी उस समय सिडनी में थे और दौरा किए थे, और यहाँ न्यूजीलैंड से चंद लोग कूडोस बैंक अरीना सिडनी में हुई कम्युनिटी समारोह में भाग लिए थे, और मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिला था, और यानी सौभाग्य हुआ था। लगभग 20,000 लोग इस कम्युनिटी रिसेप्शन में भाग लिए थे, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कूडोस बैंक अरीना सिडनी में, जैसे हमने कहा, तो वहां पर आए थे। सो हम तो उम्मीद ही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो यहां भी आए और एक बार फिर उनसे मिलने का मौका मिले। सो चलो एक और गीत हम सुनाते हैं आपको, और इस बार जो नगमा है वो शाहरुख खान की फिल्म यस बॉस से ली गई है। सो लेट्स
See if it works for you.

जी, आप सुन रहे थे द ग्रेट ग्रैम्पस ली गई ये नगमा अमिताभ बच्चन और जीनत अमान पर फिल्माई गई। और देखिए, आज छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आई हूं, यानी एक स्पीकर को चुनकर लाई हूं। और आज की जो टॉपिक है वो है पेरेंट्स और चिल्ड्रन, यानी माता पिता और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को हम ज्यादातर जेनरेशन गैप कहकर टाल देते हैं, मानते हैं अपना। यही हम कहते हैं, छोटा बच्चा है, डिफरेंट जेनरेशन के है, इसलिए हमें मानते नहीं है, या वगैरह वगैरह। तो देखिए, इसको समझने के लिए आज यही टॉपिक है, छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में। आप इसे जरूर सुनिए, और अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपको लगता है कि उनको इसको सुनने की जरूरत है, तो बेशक आप उन्हें बता सकते हैं। मैं 5 मिनट में इसको आप सभी के लिए पेश करूंगी, ठीक है? और बहुत ही बढ़िया जा रहा है कार्यक्रम, थैंक यू वेरी मच, आप सभी साथ दे रहे हैं और खुशी का माहौल है, मौसम भी बहुत ही सुहाना है, और मुझे पता है आप सभी साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म सत्ते पे सत्ता से ली गई ये नगमा, चलो जिंदगी मिलके बिताते हैं, ठीक है?

0: हाँ जी, जरूर बनाइए अपनी जिंदगी को बहुत ही हैप्पी हैप्पी, ठीक है? क्योंकि जब हैप्पीनेस होती है तो हमारे पास जो बीमारी होती है वो भी कोसों मील दूर चली जाती है. सो ट्राई एंड बी हैप्पी एंड मेक योर लाइफ द बेस्ट दैट वी हैव. जो भी समय हमको इस धरती पर मिली है ना, ये हमारी खुश नसीबी है कि हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं इस धरती पर, ठीक है? तो इसे यहीं पर छोड़ते हैं. और जैसे हमने पहले आपसे कहा कि आज हम एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं, और ये छोटी छोटी बातों में, तो यानी छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में, तो इसे आप सुनिए.
1: समय के लिए रुकिए. अभी इस वक्त आपके घर में मुमकिन है ऐसा कोई लम्हा मौजूद हो जब बाप बोल रहा है, माँ समझा रही है, और सामने बैठा बच्चा खामोशी से सर हिला रहा है. हमें लगता यूं है कि ये तरबियत हो रही है, हमें लगता है वो सुन रहा है, मान रहा है, मगर सच तो ये है कि वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि वक्त किसी तरह गुजर जाए. नफ्सियात की दुनिया में एक बहुत नरम मगर बहुत ही गहरी बात कहती है कि जब बच्चा बोलना बंद कर दे तो वो नाफरमान नहीं होता, वो बस दूर चला जाता है. हम उसे जनरेशन गैप कहकर टाल देते हैं, मगर ये वक्त का फासला नहीं है, ये समझ का फासला है, ये एहसास का फासला है. आज की इस गुफ्तगू में हम इसी नरम सी दीवार की बात करेंगे जो ना किसी लड़ाई से बनती है, ना किसी बड़े वाके से बनती है, वो बस जाने अनजाने में रोज थोड़ी थोड़ी ऊंची होती जाती है. और हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा कदम इस खामोश बच्चे को वापस आपका करीब तरीन दोस्त बना सकता है. दोस्तों, वालदेन बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर हमारी यही मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि जैसे ही बच्चा कोई मसला हमारे पास लेके आए, हम उसे फौरन हल कर दें. हमारे तजर्बे से, हमारी अकल से, हमारी समझ से, और हम समझते हैं कि यही तो मोहब्बत है. मगर बच्चे के मासूम दिल को क्या लगता है? उसे ये लगता है कि मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही जवाब आ गया तो क्या मेरे एहसास इतने अहम नहीं थे? वो आपसे हल नहीं मांग रहा होता, वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आप उसकी उलझन महसूस कर सकते हैं. तो दोस्तों, अगली बार जब वो कुछ बताने के लिए आए तो चंद लम्हों के लिए अपने अंदर के रहनुमा को आराम दे दें, बस मुस्कुरा कर सुने, उसे ये एहसास दिलाएं कि उसके टूटे फूटे अधूरे अल्फाज आपके लिए दुनिया की सबसे कीमती बातें हैं, क्योंकि वो हैं. दोस्तों, जब बच्चा घर में अपनी बात कहने से हिचकिचाता है तो वो आवाज खत्म नहीं होती, वो बस अपना रुख बदल लेती है. वो बाहर निकलता है किसी ऐसे शख्स की तलाश में जो उसे अहमियत दे, जो उसकी मामूली सी बात पर भी मुस्कुराए, जो उसे सुने बगैर फैसले के, बगैर नसीहत के. और यहाँ सबसे दिल हिला देने वाली बात यह है कि वो किसी गलत दोस्त के पास इसलिए नहीं जाता कि वो बुरा बनना चाहता है, वो इसलिए जाता है क्योंकि वहां उसे कोई सुनता है. आपका बच्चा आपकी शफकत का भूखा है, वो आपकी जायदाद नहीं मांगता, वो आपका वक्त मांगता है. और अगर घर में उसकी आम सी बात पर भी आपकी आंखों में दिलचस्पी हो तो वो बाहर किसी झूठी तवज्जो का मोहताज कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं. और दोस्तों, एक और बात, हम सोचते हैं कि वालदेन को हमेशा मजबूत नजर आना चाहिए, मगर सच तो ये है कि आपके बच्चे को आपके रोब की जरूरत नहीं है, उसे आपके नरमी की जरूरत है. आज अभी बस एक कदम उठाएं, अपने बच्चे के पास जाएं, पढ़ाई की बात ना करें, मुस्तकबिल की बात बिल्कुल ना करें, बस उसका हाथ पकड़ें और पूछें, क्या तुम अंदर से खुश हो? क्या कभी मेरी किसी बात ने तुम्हें उदास किया? आज का तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? अब ये छोटे छोटे अल्फाज ये कोई बड़े नहीं लगते, लेकिन जब एक बाप या माँ इतनी नरमी से बच्चे के दिल पर दस्तक देते हैं तो वो सारी खामोश दीवारें जो बरसों से बनी होती हैं, वो आंसुओं के रास्ते बह जाती हैं, वो जज्बात के रास्ते निकल आती हैं, और वो फासला एक ही लम्हे में एक गहरी मोहब्बत में बदल जाता है. और दोस्तों, एक वक्त वो भी आएगा जब आपके बाल सफेद होंगे, कदमों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, और शाम के वक्त घर में खामोशी होगी, उस वक्त आप चाहेंगे कि आपका बेटा या आपकी बेटी आपके पास बैठे, अपने दिन की बातें करे, अपनी हंसी, अपनी परेशानियां, अपनी कहानियां आपके साथ बांटे. वो लम्हा आपके आज से बनता है. अगर आज आप उनकी बात मुकम्मल होने दें, अगर आज आप उनके अल्फाज की कदर करें, अगर आज आप उनका दिल जीत लें, तो कल वो आपके पास भाग भाग कर आएंगे. ये बच्चे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत सरमाया है. इनके साथ बहस जीतने की कोशिश हरगिज ना करें, बस उनका दिल जीत लें. रिश्ते रोब से नहीं, मोहब्बत और एहसास से फलते फूलते हैं. अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
0: हाँ जी, ये थी छोटी छोटी बातें अपनों के सेगमेंट में आज के लिए। एंड उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीख सकेंगे या आपके जीवन में कुछ बदलाव इसके बाद हो सके, मैं उम्मीद यही करती हूँ। कहते हैं हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है हमें जिंदगी, हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है हमें जिंदगी, कुछ इस तरह हमें अजमाती है जिंदगी, एक ऐसी तमन्ना है जिंदगी जिसमें हमारे सामने होती है हर चीज लेकिन हम उसे पा नहीं सकते हैं। कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि करनी क्या चाहिए ना। ये थी आपके लिए छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में।
2: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए

हाँ जी, रिश्ता वही सोच नहीं। तो किस तरह से हम इसे देखते हैं ये हमारे ऊपर है, मगर ये थी तू ही तू, स्टार प्लस एंथम इसे कहते हैं, रिश्ता वही सोच नहीं। तो हाँ जी, अब हम चलते हैं। अगर पहले तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ, एक रंगीन शाम आपके नाम। सो आप हमारे साथ जुड़ गए हो तो बहुत ही खुशी मिल रही है मुझे, मगर अब हम चलते हैं।

अगर पहले तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ एक रंगीन शाम आपके नाम। सो आप हमारे साथ जुड़ गए हो तो बहुत ही खुशी मिल रही है मुझे। मगर अब हम चलते हैं आगे कार्यक्रम को लेकर चलते हैं और आपके लिए आज

का आधार या बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। तो ये शरीर के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है और विभिन्न कार्यों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। तो पहले पहल तो जानेंगे कि प्रोटीन के महत्व के मुख्य कारण क्या है। अगर शायद हम में से तो बहुत सारे लोगों को पता ही है, मगर हम में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता कि प्रोटीन की रोल क्या होती है, इसके महत्व क्या, मुख्य कारण क्या होती है। तो पहले पहल तो फर्स्ट आती है मांसपेशियों का निर्माण और मजबूती, यानी मसल मैस और स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन मांसपेशियों के लिए मसल्स को बनाने, उनकी मरम्मत करने और उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यदि आप व्यायाम करते हैं या शारीरिक मेहनत करते हैं तो मांसपेशियों के जो पुनर्निर्माण के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी है। फिर ये जो टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ, ठीक है, चोट लगने पर शरीर को ठीक करने यानी हीलिंग और कोशिकाओं यानी सेल्स की मरम्मत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ये त्वचा, बालों, नाखूनों और आंतरिक अंगों के स्वस्थ विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। हड्डियों का स्वास्थ्य यानी बोन हेल्थ, पर्याप्त प्रोटीन का सेवन हड्डियों के यानी बोन डेंसिटी को नियंत्रित करने और उन्हें मजबूत रखने में मदद करता है। खास तौर से यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि खास तौर से कुछ हद तक बुजुर्ग लोग जो है वो थोड़े से कहीं गिर पड़ते हैं और उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन की कमी भी आपके बोन में होती है। तो इसलिए प्रोटीन, बराबर प्रोटीन होना यानी पर्याप्त प्रोटीन की मात्रा होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म और वेट मैनेजमेंट, हाँ जी, मेटाबॉलिज्म और वेट मैनेजमेंट के लिए उच्च प्रोटीन वाला आहार भूख को कम करता है और पेट भरा हुआ महसूस करता है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है तो आपकी पेट भरा हुआ महसूस करता है और ये मेटाबॉलिज्म को तेज भी करता है और कैलोरी जलाने में भी मदद करता है, जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। सो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है प्रोटीन हमारे लिए ना। इसके साथ साथ एंजाइम्स और हॉर्मोन्स, तो शरीर में पाचन, ऊर्जा उत्पादन और रक्त के थक्के जमने, ने हमारे दही में जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि खून जम गया है हमारे शरीर पर, तो ये थक्के जमने जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए आवश्यक एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हॉर्मोन का भी निर्माण करता है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी तक जो कुछ मैंने आपको बताई ये सभी हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमारी जो इम्यून सिस्टम, प्रोटीन जो है वो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ सकता है। ठीक है, तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत यानी बेस्ट प्रोटीन सोर्सेस, तो आप तो सोच रहे होंगे कि अंडे में तो बहुत प्रोटीन है, पर उसे आप अभी बगल कीजिए। पहले तो हम शाकाहारी की ओर जाते हैं, जो लोग शाकाहारी हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, तो सोयाबीन, जो सोया चंक्स होते हैं, इसमें ये बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। इसके साथ साथ पनीर और कई किस्म के दालें होती हैं, जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, काबुली चना, और इसके साथ साथ दूध, दही, नट्स और बीज यानी कि मूंगफली, बादाम एक्सेट्रा। और अगर आप मांसाहारी हैं तो हाँ, अंडे, मछली, चिकन, रेड मीट, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। वैसे तो प्रोटीन का नाम लेते ही, जैसे हमने कहा, सबसे पहला ख्याल दिमाग में अंडे का आता है, क्योंकि प्रोटीन की कमी को पूरा करने और मसल्स बनाने के लिए जो लोग जिम जाते हैं ना, वो अक्सर सुबह सुबह उबले हुए अंडे खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में कुछ ऐसी देसी चीजें मौजूद है जो अंडे से 3 गुना तक सस्ती और उनमें अंडे से

दोगुना प्रोटीन मिलता है। जी हाँ, अगर आप रोज अंडा नहीं खाना चाहते हैं और आप पूरी तरह शाकाहारी यानी वेजिटेरियन हैं, तो इन चीजों को डाइट में शामिल आप कर सकते हैं। तो इसे हम एक और गीत सुनते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से आइटम है और क्यों वो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है? और आप सुन रहे हैं, मैं हूं शशि जोखन, आपका साथ पूरे 7 बजे तक दूंगी। चलो चलते हैं अब पुराने गीतों की दुनिया की ओर बढ़ कदम उठाते हैं।

जी, बहुत ही बढ़िया सर ये नगमा, एंड उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। खैर, हम बातें कर रहे थे प्रोटीन के बारे में ना, तो मैं आपको बताने वाली थी कि प्रोटीन की कमी के लिए क्या हमें खाना चाहिए। तो प्रोटीन के लिए खास तौर से सोयाबीन, अगर प्रोटीन के मामले में किसी चीज को, हाँ जी, किसी चीज को अगर किंग कहा जाता है तो वो है सोयाबीन। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां एक सामान्य अंडे में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है, वहीं सिर्फ 100 ग्राम सोयाबीन की न्यूट्रिशन वैल्यू देखें तो उसमें लगभग 36 से लेकर लगभग 40 ग्राम तक प्रोटीन आपको मिल सकती है। तो कैसे करें सेवन, आप सोच रहे होंगे। अगर आप कभी खाए नहीं है सोयाबीन तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे इसके सेवन की जाए। तो इसे आप सब्जी के तौर पर बनाकर खा सकते हो, पुलाव में भी डाल सकते हो, या उबाल कर सैलड के रूप में भी खा सकते हो। सो इट इज दैट सिंपल, ठीक है। और काला और सफेद चना, हमारे बुजुर्ग हमेशा सुबह सुबह भिगोकर चने खाने की सलाह देते थे और उनकी ये बात बिल्कुल सच है। चने को प्रोटीन का सबसे बेहतरीन और सस्ता जरिया माना जाता है, क्योंकि 100 ग्राम चने में करीब 19 ग्राम प्रोटीन होता है। और कैसे करें इसका सेवन, तो अगर आप सुबह खाली पेट भीगे हुए स्प्राउटेड चने खाते हो तो ये आपके शरीर को दिन भर के लिए एनर्जी देता है और इसे आप उबालकर भी खा सकते हो। और दालें की ओर चले तो हमारे घर में तो बहुत किस्म के दाल है ना। किचन में आप चले जाइए, आप कंटेनर में भर भर कर रखे हुए हैं अलग अलग किस्म के दाल। तो हमारे घरों में बनने वाली दालें सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। मूंग, मसूर, अरहर जिसे हम तुअर भी कहते हैं, और उड़द जैसी दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम कच्ची दाल लेते हैं तो उसमें लगभग 22 से 24 ग्राम तक प्रोटीन होता है। और आप सोच रहे होंगे इसे कैसे, अब हम इसकी सेवन कैसे करें। तो दोपहर या रात के खाने में एक बड़ी कटोरी गाढ़ी दाल या दाल से टेस्टी नाश्ता आप बना लीजिए और उसे आप खाइए, ठीक है। और अंत में दही, दही, यस, गर्मियों के मौसम में दही लगभग हर घर में खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सादा दही भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा जरिया है, खासकर अगर आप दही का पानी छानकर उसे गाढ़ा, हंकर्ड उसे कहते हैं ना, ये बना ले तो इसका प्रोटीन कंटेंट और बढ़ जाता है। जैसे कि मानो 100 ग्राम सामान्य दही में करीब 11 ग्राम तक प्रोटीन आपको मिल सकता है। और कैसे करें इसका सेवन, इसे आप रायता बनाकर खा सकते हो। बहुत सारे घरों में रायता बनती है ना, कभी योगर्ट में हम कैरेट छोड़ते हैं, कभी खीरा छोड़ देते हैं, ये सभी हम डालते हैं ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रायता के रूप में आप इसे तौर पे आप खा सकते हो, या छाछ बना लीजिए और लस्सी के रूप में भी आप इसे पी सकते हो। तो संक्षेप में देखें तो स्वस्थ जीवन शैली, मजबूत मांसपेशियों और शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन का संतुलित मात्रा में सेवन अनिवार्य है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कुछ भी अभी मैंने आपको बताई है ये आपके लिए एक अवेयरनेस के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। और अगली बार अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो जरूर आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए और डॉक्टर से बताइए कि आपको जानना है कि आपके शरीर में, आपके ब्लड में कितने प्रोटीन है, तो वो आपको सही ढंग से बतला देंगे। और ऑफ कोर्स ऐसे अगर आप जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो वैसे मैं ना डॉक्टर हूँ ना नर्स हूँ, पर फिर भी मैं ऐसे ऐसे जानकारी आपके लिए ढूंढ कर लाती हूँ ताकि आपकी सेहत बनी रहे और आप खुशहाल जिंदगी जी सके। तो अगला गीत हम सुनते हैं, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और मैं हूँ शशि जोखन, पूरे 7 बजे तक आपका साथ दूंगी, ठीक है। और हाँ जी, जो अंग्रेजी शब्द मैं लेकर आती हूँ हर हफ्ते ना, तो आज का जो शब्द है वो है पेरेंटिंग, ठीक है। तो इंग्लिश शब्द है पेरेंटिंग, आप जाइए और ढूंढिए हिंदी में पेरेंटिंग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कटी पतंग की ओर।

0: हाँ जी, राजेश खन्ना पर फिल्माई गई ये नगमा, बहुत ही प्यारा सा फिल्म कटी पतंग का ये गीत, और मुझे पता है बहुत से लोग इस गीत को बहुत पसंद करते हैं। और हाँ जी, अब हम आपको लेकर चलते हैं, अगर आप भारत से हैं और विदेश में आकर बसे हुए हैं, और विदेश में आपने पासपोर्ट ले ली है फॉरेन कंट्री का, भारत से अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हो तो आपको भारत का जो पासपोर्ट है उसे तुरंत वापस करना पड़ता है। तो ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, वो OCI अप्लाई कर देते हैं। तो OCI जब आप लेते हैं तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप OCI लेते हैं तो आपको आपके आप उसको अभी तक यूज कर सकते हो या वैलिड है ओवरसीज में? तो ये आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, एंड उम्मीद है कि ये आपके लिए फायदेमंद हो।
1: विदेश आने से पहले तो उस वक्त आपके पास हो सकता है पैन कार्ड भी हो, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड भी हो, और उसके साथ साथ वोटर आईडी भी हो। अब आप विदेश में काफी दिनों से रहते हैं, काफी महीनों या सालों से रहते हैं, तो क्या ये चारों डॉक्यूमेंट आज भी वैलिड हैं? तो देखिए, जब तक आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, यानी कि बेशक आप NRI हैं लेकिन आप भी आपकी सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की है, तब तक आपके वोटिंग राइट खत्म नहीं होते। तो आपका वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप टाइम टाइम पे उनको रिन्यू करते रहते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट आज भी वैलिड हैं, इवन दो यू आर लिविंग अब्रॉड। लेकिन जैसे ही आप OCI कार्ड ले लेते हैं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो इनवैलिड हो जाता है वो होता है वोटर आईडी, बिकॉज एज सून एज यू बिकम OCI आपके वोटिंग राइट जो इंडिया में थे अब वो खत्म हो गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करता। तो सबसे पहला आपका वोटर आईडी जो है वो इनवैलिड हो गया। उसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि NRI और OCI कार्ड होल्डर आधार कार्ड भी ले सकते हैं, पैन कार्ड भी ले सकते हैं और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं, ऐसे में अगर ये डॉक्यूमेंट आपके आज तक एक्सपायर नहीं हुए हैं और इनको आप टाइम टाइम पे रिन्यू करते रहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके आज भी वैलिड कंसिडर किए जा सकते हैं। जब आप इंडिया में रहते थे विदेश आने से पहले तो उस वक्त आप,
0: हाँ जी, तो आई होप इससे आपको कुछ फायदा हो। तो एक और जो सदाबहार गीत है इसे हम सुनते हैं।
2: दिल का भंवर करे पुकार प्यार का।

जी, बहुत ही बढ़िया सा ये नगमा एंड मोहम्मद रफी जी की आवाज में आप सुन रहे थे। खास तौर से देवानंद पर फिल्माई गई और साथ में नूतन जी इस फिल्म में दिखे थे। एक्चुअली तेरे घर के सामने याद था आपका, याद आया। बहुत से लोग हैं जो शायद इस फिल्म को देखे होंगे और पुराने जमाने की फिल्म है और पुराने यादों को हम ताज़ा कर रहे हैं कुछ हद तक। और जैसे हमने कहा कि डिफरेंट मूड्स और सेंटिमेंट्स लेकर हर एक गीत आते हैं, बनाया जाता था उस समय। सो हमारी कोशिश रहती है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉन्ग्स दू कि शायद आपको पसंद आ जाए। तो देखिए, टीवी सीरीज आप देखते हो? टीवी सीरीज एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मशहूर सीरीज आती है 5OTT में, और ये पंचायत सीजन 5 शुरू हो गई है, होने वाली है एक्चुअली। हाँ, तो कब और कहाँ देख पाएंगे आप जितेंद्र कुमार और नीता गुप्ता की हिट वेब सीरीज का 5वां सीजन? पंचायत के 5वें सीजन को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसने फैंस के दिलों को जोश से भर दिया है। सीजन 4 के जो ड्रामेटिक एंडिंग के बाद महीनों की अटकलों के बाद लोग सोच रहे थे कि पता नहीं, मालूम नहीं सीजन 5 कब आएंगे या नहीं आएंगे। ये बहुत ही पॉपुलर आप कॉमेडी ड्रामा कह सकते हैं। ये सीरीज अगर आप नहीं देखे हो तो जरूर आप देखिए। ये जो आने वाली सीजन है ये अमेज़न प्राइम में आप देख सकेंगे, इसकी नई इंडियन कंटेंट के तौर पर की गई है। तो हालांकि रिलीज की सही तारीख अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन ऑफकोर्स प्राइम वीडियो पर ये स्ट्रीम जरूर ही जरूर होगी। सो आप ध्यान रखिए, इसको ख्याल रखिए, ये पंचायत के 5वें सीजन का इंतजार जो है वो खत्म हो गई है। एक्चुअली हमने भी देख रखी है, बहुत ही एंजॉय करते हैं। एक्चुअली मेरी जो बेटी और दामाद जी, उन्होंने कहा कि आप देखिए इसे जरूर, तो हम देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, बेहद पसंद कर रहे हैं। सो अगला गीत जो हम लेकर आए हैं ये है एक बार फिर मोहम्मद रफी जी की आवाज में, एंड ये शशि कपूर पर फिल्म आई गई है उनके साथ आशा पारेख। कैन यू गेस कौन से फिल्म का गीत हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं? कुछ याद आई? नहीं तो चलो सुनो।

0: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा नगमा ये, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही शशि कपूर और आशा पारेख पर ये जो जब फिल्माई गई तो इनकी जो जो सीनरी है जहां पर इसकी शूटिंग की गई बहुत ही खूबसूरत। एंड चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद में हम वापस आएंगे।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: हाँ जी, देखिए अगर आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बेशक आप फोन कीजिए रेडियो ब्रिजवानी के एंजेला पूरन को और वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी भी मदद करेगी।
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: हाँ तो देखते हैं अपना कि कैसे लोग अपना अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर फोन करते हैं और बातें करते हैं।
4: Sending our Digicel top up to loved ones in Fiji is super easy. Keval apne nearest dairy, supermarket or petrol station pahunchiye aur kharidiye 10, 20, 30 ya $50 top up. Aap website www.digicelinternational.com visit bhi kar sakte hain. Digicel top up apne family ko Fiji dene ke liye. Paisa bhejne ke liye our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to Digicel Fiji. Keval aap को रजिस्टर होना है एट www.clickexpresspic.com पर। डिजिसेल, वी आर बेटर टुगेदर।
5: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
0: बेशक आप सुनते ही रहिए, पर हमारे पास तो चंद मिनट ही बचे हुए हैं, मगर हमारी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं।
6: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
7: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
7: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
0: हाँ जी, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और आज जो हमने आपको वर्ड दी थी ना, जो शब्द दी थी, और आप सोच रहे होंगे कौन से शब्द की बात कर रही हैं। वेल द वर्ड वॉज पेरेंटिंग, ठीक है। तो पेरेंटिंग के आप तो ढूंढ कर रखे ही होंगे, मुझे पता है, मगर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या ढूंढ कर लाई हूँ, ठीक है। तो पेरेंटिंग, मेरे अनुसार पेरेंटिंग को हिंदी में परवरिश कहते हैं, ठीक है, परवरिश, या फिर लालन पालन भी बोलते हैं कुछ लोग बहुत प्यार से ना। और फिर आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये वर्ड तो है ही पेरेंटिंग, बट इसे हम इस्तेमाल कैसे करते हैं सेंटेंस में ना। तो आप उसे यूज कर सकते हो, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि बहुत ही ये जो इनकी जो लालन पोषण है बहुत ही अच्छी तरह एक माता पिता कर रहे हैं ना, या फिर अपने बच्चे की परवरिश बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर पेरेंट बोलते हैं तो माता पिता, पेरेंट्स को माता पिता बोलते हैं ना, तो आप उसे उस ढंग से भी यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। और बच्चे जो होते हैं ना वो माता पिता से ही सीखते रहते हैं, जो माता पिता करते हैं बोलते हैं उसे, टीचर मास्टर तो सिखाते रहते ही हैं ना स्कूल में, मगर घर पे जब बच्चे आते हैं तो किस ढंग से वो अपना रवैया, अपना काम धंधा कैसे करते हैं, अपने होमवर्क वगैरह कर पाते हैं टाइम से या नहीं, तो किस तरह से पेरेंटिंग होती है ना। सो जैसे पॉजिटिव पेरेंटिंग कहते हैं ना कि बच्चों का दिल जीतने के लिए प्यार से बात करें, तो ये पॉजिटिव पेरेंटिंग हुई। और कम्युनिकेशन के तौर पे आप सोचेंगे तो वो होगा कि बच्चों के साथ समय बिताएं, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद चिल्ड्रन। और जैसे कि उड़ान जैसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम पेरेंटिंग के तौर पे देख सकते हैं, मगर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, तो हम इसे यहीं पर छोड़ रहे हैं। और
5: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
0: हाँ जी, चलो अगला गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसे हमने एक्चुअली फिल्म, इसे हमने फिल्म ब्लैकमेल से आपके लिए चुन कर लाए हैं, किशोर दा की आवाज इस बार।

0: हाँ जी, फिल्म ब्लैकमेल से ली गई एक बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही शानदार गीत. एंड ऑफ कोर्स अब हम आपको लेकर चलते हैं
1: सुबह से शाम तक.
2: What I will dance, my dance shall speak for me.
0: हाँ जी,
1: शाम से रात्रि तक.
2: Superb, superb, fabulous, outstanding.
3: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा. लगा कैसा.
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान.
2: हिल मत चल.
3: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा. ओके
0: हाँ जी, लेट्स चिल. मगर अभी सताक्षी आएगी तो वो आपको चिल कराएगी, ठीक है. मगर अभी तो हम आपको लेकर चलते हैं राहत फतेह अली खान. हाँ जी, बहुत ही अच्छे गायक है वो. ये तो बहुत कम बात हुई उसके बारे में ना. ये तो अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोगों को जब ऐसे बोलते हैं. मगर नहीं, बहुत ही बढ़िया सा गीतकार है ये. एंड एक बहुत ही पॉपुलर गीत के साथ मेरे ख्याल से ये शायद मेरे आखिरी गीत हो, मगर आज के लिए

नमस्कार जी, राहत फतेह अली खान की आवाज में आप सुन रहे थे बहुत ही मशहूर गीत। और अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सफर खत्म हो जाता है लेकिन जिंदगी यादों में सिमट कर नहीं रहती, वो चलती रहती है आज भी और कल भी। तो यहीं से मैं अब रुखसत ले रही हूँ और अगले सप्ताह एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगी, मगर चलते चलते ये गीत आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। बहुत ही पॉपुलर गीत, मुझे बहुत ही पसंद है, उम्मीद है आपको भी पसंद है। ...1965 की फिल्म मेरे सनम से ली गई, विश्वजीत चटर्जी और आशा पारेख पर फिल्माई गई ये गीत मोहम्मद रफी जी की आवाज में।

फरमाइशें आपको बेहद पसंद हैं, हम जानते हैं। भाई मुझे तो यूं भी मेरी पसंद का गाना कहीं प्ले हो जाए तो मजा आ जाता है। मतलब भले ही मैंने रिक्वेस्ट ना किया हो, बस वो गाना प्ले हो जाए तो लगता है कि जैसे अपनी पसंद की कोई चीज मुझे मिल गई। तो आप भी अगर लिखना चाहते हैं हमें अपनी पसंद के गाने और चाहते हैं कि हम आपके लिए प्ले करें, तो उन्हें हम तक जरूर पहुंचाएं। जी हाँ, आप हमें रेडियो प्रस्थानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर बता सकते हैं आपकी पसंद के सॉन्ग्स और हम उन्हें जरूर आपके लिए प्ले करेंगे। वैसे आज भी मेरे पास ढेरों ढेर रिक्वेस्ट पहुंच चुकी हैं जो इस बात का इंतजार कर रही हैं कि एक एक करके हम कैसे उन्हें आप तक पहुंचा दें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के फरमाइशी गीतों के सफर की, और हमेशा की तरह इस सफर में आपकी सताक्षी आपके साथ है। इस ट्रैक के साथ आगे बढ़िए, इसके उस पार जानेंगे आज की पहली रिक्वेस्ट किसकी है। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी।

फरमाइशी गीत एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ। वेलकम बैक एक बार फिर से आपको, और आज हम फरमाइशी गीतों में फिर से ढेरों रिक्वेस्ट आपकी लेकर आए हैं। आइए जानते हैं कि आज की पहली रिक्वेस्ट किसकी है, और ये रिक्वेस्ट आई है मेरे पास आमला सिंह की, और आमला ने हमें लिखा है ब्रिस्बेन से। और आप कहती हैं कि रेडियो ब्रिस्वानी के मैं सभी प्रोग्राम सुनती हूँ, और बिना रेडियो के तो मेरा काम चलता नहीं है। मेरे किसी भी काम में रेडियो मेरा साथी है, और हमेशा रेडियो ब्रिस्वानी के गाने सुनना, गुनगुनाना, यही मेरा पैशन और मेरी हॉबी है। और ये रिक्वेस्ट आई है मेरे पास आमला सिंह की, और आमला ने हमें लिखा है ब्रिस्बेन से। और आप कहती हैं कि रेडियो ब्रिस्वानी के मैं सभी प्रोग्राम सुनती हूँ, और बिना रेडियो के तो मेरा काम चलता नहीं है। मेरे किसी भी काम में रेडियो मेरा साथी है, और हमेशा रेडियो ब्रिस्वानी के गाने सुनना, गुनगुनाना, यही मेरा पैशन और मेरी हॉबी है। आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ प्यार दीवान

हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट पहुंच रही हैं और इतने पैशन के साथ, इतनी शिद्दत के साथ आप हमारे शो सुनती हैं. सो ये जो है, जितना भी थैंक यू कहा जाए वो कम है उसके लिए, क्योंकि आपका लोगों का जो प्यार है ना, वही रेडियो ब्रिस्वानी को और सताक्षी को, दोनों को एक आइडेंटिटी देता है, हमें हमारी पहचान देता है. तो थैंक यू सो मच. हाँ, तो प्यार दीवाना होता है, ये ट्रैक आप सुनना चाहती हैं, किसके लिए सुनना चाहती हैं हमें ये भी बताइएगा जरूर. किशोर कुमार की आवाज में है ये गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना है, आर डी बर्मन का म्यूजिक है. तो चलिए, इस गाने के अल्फाज ही इतने प्यारे हैं कि और क्या ही कहा जाए. आपके लिए खास ये ट्रैक के प्लस टू रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए फरमाइशी गीत सताक्षी के साथ.

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: फरमाइशी गीत, इसी सफर को इस वक्त आप रेडियो ब्रिस्वानी पर एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। जी हाँ, दिल का मौसम हसीन हो तो बाहर कैसा भी मौसम हो अच्छा ही लगता है, और दिल का मौसम तब बदलता है जब अपनी पसंद का गाना रेडियो स्टेशन पर सुनने को मिल जाता है। वह यूं तो आपको बहुत वेट करना पड़ता है अपनी पसंद के गाने को सुनने के लिए, पता नहीं हम कब प्ले करें, लेकिन फरमाइशी गीतों में ये इंतजार जरा कम हो जाता है क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर देते हैं और हम आपके लिए उस ट्रैक को प्ले कर देते हैं। फिलहाल अगली रिक्वेस्ट किसकी है जानने से पहले एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये अगला ट्रैक और सुनते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

फिर दे। तो दोस्तों अगली जो फरमाइश मेरे पास आई है वो आई है ब्रिस्बेन से और ये हैं सुजाता रावत। सुजाता कहती हैं, हाय सताक्षी, रेडियो ब्रिस्बानी बहुत ही अच्छा चैनल है और बॉलीवुड के गाने हों, पंजाबी सॉन्ग्स हों, हमें बड़ा ही मजा आता है सुन करके। ये कम्युनिटी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हम तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपको और आपकी टीम को थैंक यू सो मच। आज मैं एक गाना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, फिल्म जीवा का गाना जो बहुत ही सॉफ्ट है और दिल को कहीं छू जाता है। कुछ गाने होते हैं ना जिन्हें हम भूल नहीं पाते, ये गाना कुछ वैसा ही है, रोज रोज आंखों तले, प्लीज इसे प्ले कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये और सबसे पहले तो आपने हमें इतना अप्रिशिएट किया, रेडियो ब्रिस्बानी को अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच और हम पूरी कोशिश करते रहेंगे कि आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। फिल्म जीवा का गाना रोज रोज आंखों तले आप सुनना चाहती हैं और ये गाना आशा ताई और अमित कुमार की आवाज में है, म्यूजिक आर डी बर्मन साहब का है। सच में ये गाना कुछ ऐसे गानों में से है जो दिल में कहीं बैठ से जाते हैं। आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये ट्रैक और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी पर फरमाइशी गीत।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: फरमाइशी गीत इस वक्त आप रिजु प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ सुन रहे हैं। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और आपके वक्त को खास बनाना, आपके इस लम्हे को खास बनाना, यही शौक है हमारा और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इसमें कामयाब हों। वैसे मुझे लगता है कि अगर अपनी पसंद का गाना प्ले हो जाए तो यूं ही इंसान खुश हो जाता है, कितना भी खराब मूड आपका हो। सपोज आपने पहले गाना रिक्वेस्ट किया है और आज आपका मूड खराब है, बट आज वो गाना जो रिक्वेस्ट आपने किया था वो प्ले हो जाए तो मूड ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है ना। मतलब जब रेडियो पर नाम अनाउंस होता है कि भाई इनके रिक्वेस्ट पर हम ये गाना प्ले कर रहे हैं तो आए हाय, मतलब मजा ही आ जाता है। नहीं तो हमें लिखते रहिए अपनी रिक्वेस्ट और मजे लेते रहिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

0: छोटा लव इश्क बबुआ।
1: वेल चलिए आगे बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की ओर, इस ट्रैक के बाद बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली फरमाइश किसकी है। तो किसकी ली जाए भाई अगली फरमाइश, ये है मेलबर्न से आरती सिंह की। आरती कहती हैं, हाय सताक्षी और रेडियो प्रसवानी की पूरी टीम को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार आरती जी, हेलो। आप आगे कहती हैं कि मैं माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन हूँ और बचपन से ही उनके स्टेप्स फॉलो कर करके मैंने डांस सीखा है। अभी मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ लेकिन सिर्फ माधुरी दीक्षित जी के गानों पर। तो प्लीज याराना फिल्म से मेरे लिए प्ले कीजिएगा मेरा पिया घर आया ओ राम जी। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ये गाना हम आपके लिए जरूर प्ले करेंगे और आप माधुरी दीक्षित की इतनी बड़ी फैन है ये जानकर तो माधुरी दीक्षित भी बड़ी ही खुश हो जाएगी। वैसे इस गाने की बात कर ली जाए तो ये गाना जी हाँ फिल्म याराना का जरूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे लिसनर्स को भी बताना चाहूंगी कि ये गाना एक्चुअली एक कवाली है। जी हाँ, और याराना फिल्म में तो इसे कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया है और अनु मलिक ने अपनी आवाज दी है, बट असल में ये जो कवाली है ये 18वीं सदी में सूफी कवि बुल्ले शाह द्वारा लिखी गई थी। बुल्ले शाह ने इस कवाली को लिखा और क्यों लिखा जानते हैं? उन्होंने लिखा था इसे इनायत कादरी की वापसी पर। वैसे नुसरत साहब, नुसरत फतेह अली खान ने भी इसे अपनी आवाज से कवाली के रूप में सजाया है। तो ये इस गाने का बेसिकली सच्चाई है, इसका हिस्सा है, तो मैंने आपके साथ बांटा। लेकिन हाँ, आपके लिए फिल्म याराना से माधुरी दीक्षित के डांस से सजा मेरा पिया घर आया ओ राम जी। सुनिए इसे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: फरमाइशी गीत। जी हाँ, आपने वीकेंड पर आज संडे को आप यही सफर सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो गाने जो आपने रिक्वेस्ट किए सताक्षी इस वक्त आप तक पहुंचा रही है। वैसे अभी तक आपकी रिक्वेस्ट अगर हम तक नहीं पहुंची है तो आपको छोटा सा काम करना है, अपनी रिक्वेस्ट हमें लिख भेजनी है हमारे रेडियो प्रेसवानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। लिख भेजिए अपना फेवरेट सॉन्ग और उसकी फिल्म का नाम, और वादा करते हैं हम कि उसे जरूर आपके लिए लेकर आएंगे, प्ले करेंगे। फिलहाल अगला एक और मेल है मेरे सामने, इसकी बड़ी ही खूबसूरत रिक्वेस्ट है और बड़ा ही खूबसूरत ये गाना है। लेकिन आपके साथ इसे शेयर करने से पहले एक अपनी पसंद का गाना प्ले कर रही हूँ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रेसवानी, एंजॉय करते रहिए फरमाइशी गीत।

ब्रिस्बेन से ही है मेरे पास अगली मेल एक बार फिर से, और ये है जॉन डियो की। जॉन कहते हैं कि सताक्षी, आपने मेरे बहुत सारे मेल्स अभी तक शामिल किए हैं और कई बार अपने पसंद के गानों को मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। यकीन मानिए, रेडियो ब्रिस्बेन से नाता कुछ ऐसा है जैसे एक घर का हो, और बड़ा अच्छा लगता है इस चैनल को सुनना। जब कभी बिल्कुल भी कोई प्रोग्राम नहीं सुन पाते हैं तो लगता है कि कुछ तो मिस हो रहा है जिंदगी से। यादों के झरोखे एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। यादों का चिप्स हम मिस करते हैं और विश करते हैं कि जल्दी से वो सफर भी दोबारा शुरू हो। ये प्रोग्राम्स जो हैं, ये हमें वापस रिफ्रेश कर रहे हैं, करते रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। सो प्लीज मेरी पसंद का गाना जरूर प्ले कीजिएगा। मैं सुनना चाहता हूँ फिल्म चिराग का गाना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और इस गाने को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपनी वाइफ को, जिनकी आंखों में शादी के 6 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी मैं खो जाता हूँ। ऐसा लगता है वहीं पे मेरी दुनिया रुक गई है। तो ये गाना मेरी वाइफ के लिए प्लीज प्ले कीजिए। बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, और मतलब सच्ची मोहब्बत यही है जो वक्त के साथ कम ना हो बल्कि और बढ़ती जाए। और दूसरी बात कि आप हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिस भी कर रहे हैं, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट दें और आप रेडियो ब्रिस्बेन को एंजॉय करते रहें यूं ही जैसे अभी आप कर रहे हैं। फिल्म चिराग से जी आप सुनना चाहते हैं तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। जितना खूबसूरत मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, रफी साहब की आवाज ने इस गाने में और भी जान डाल दी है। रफी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज में है ये ट्रैक, जिसका म्यूजिक है मदन मोहन जी का, और स्क्रीन पर आशा पारेख और सुनील दत्त साहब। इंजॉय कीजिए इनकी केमिस्ट्री को और रूहानी गाने की रूहानियत को। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन सुनते रहिए फरमाइशी की।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: डिजिटल प्रसवानी पर आप हैं मेरे साथ और फरमाइशों का आपके फरमाइशों का ये सफर चल रहा है फरमाइशी गीत जिसमें वो गाने हम इस वक्त आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें आपने रिक्वेस्ट किया है। आप हमें लिख सकते हैं अपनी पसंद के गाने रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर, क्योंकि हम जानते हैं कि इन गानों को सुनकर आपका भी मन जरूर बेताब होगा अपनी पसंद के गानों को सुनने के लिए। जी हाँ, तो कब तक दूसरों के पसंद के गाने ही सुनते रहेंगे भाई, आप भी रिक्वेस्ट कीजिए अपने सॉन्ग्स हमें। और आज अगली फरमाइश किस
2: कारवाई।

नमस्कार, आदाब, सलाम ख्वातिन हज़रात, खुश आमदीद। मैं आपका रेडियो हम सफर निले आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप ही के कार्यक्रम कारवाए गजल में। जब हम किसी से राज दिल बांटते हैं, उसे अपना हमदर्द मानते हैं और जानते हैं कि जो बात कही जा रही है वो दूसरे के दिल तक पहुंच रही है। मैं आपको मेरा मेहरम समझता हूँ, इसीलिए आपसे मिलना मेरे लिए रिवायत बना रखी है मैंने। आगाज करते हैं अपनी महफिल का कुछ इस अंदाज से कि अंदाज अपना देखते रहे आईने में वो, अंदाज अपना देखते रहे आईने में वो, और ये भी देखते रहे कि कोई देखता ना हो। अगर तुम वही हो जो तस्वीर में हो, अगर तुम वही हो जो तस्वीर में हो, समझ लो लिखी मेरी तकदीर में हो। सभी सांस लें हम यूं खुल के हवा में, मुकद्दर किसी का न जंजीर में हो। सुनते रहिए कारवाई गजल।

गजलों के कारवां की बस अभी शुरुआत ही हुई है जनाब। दिल की धड़कनों को संभाल कर रखेगा, उनका मुस्कुराकर सिर्फ नजर भर देखना ही दिल को घायल कर देता है। तभी तो वसीम बरेलवी साहब ने क्या खूब कहा है, क्या लिखा है कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ दो तो बताऊं हर शख्स तुम्हारी तरफ देख रहा है। मोहब्बत की है तो इरादों में गहराई होना वाजिब फर्ज है, बेवजह जब करार मिल जाए तो दिल बड़ा बेकरार रहता है, डर लगता है कि उस ख्वाब की तामील हो भी पाएगी जिसे देखते हुए न जाने कितनी रातें करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश की है। ये बेकरारी, ये दर्द, ये तड़प, ये उलझन, लगता है इश्क के ही जैसे ही सारे नाम है। मैं तेरा हूं समंदर भी, न मुझको तुम डुबा देना, अगर रखती इरादों में हो गहराई बता देना। तेरे लब का सितम खाना है खुशबू की करीबी पे, पयाए इकसीर की हसरत रिवायत ये निभा देना। तेरी जुल्फों का दीवाना हूं काजल से बहुत जख्मी, हो बहकाना जरूरी तो मुझे कुछ तो पिला देना। यूं मजहब सा निभाऊंगा मैं रिश्तों की खुमारी को, मैं बुतखाना बना दूंगा जरा तुम मुस्कुरा देना। आप सुनते रहिए कारवाई गजल रेडियो बरसवानी पर, मैं हूं नीले आपके साथ। आता हूं कुछ और खूबसूरत गजलें और नज़में लेकर।

वेलकम बैक, आपका रेडियो हम सफर निले है आपके साथ और आप सुन रहे हैं कारवाएं गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर। कदमों की आहट को समझ लेते हैं मेरे महबूब, तुझे हम दूर से पहचान लेते हैं। जो रिश्ता दिल के करीब होता है वो अनजाने में साथ ना होते हुए भी हमेशा हमारे साथ होता है। समय को करवट बदलते देर नहीं लगती है। आज जो अपना था वो शायद कल पराया हो जाए। पर जब कोई अपना हमसे रूट जाता है या कहिए दूर हो जाता है तो दिल में कसक उठती है। लेकिन जनाब, निले का ऐसा मानना है कि इश्क का जज्बा दिल से ऐसे नहीं निकाला जा सकता। हाँ, सच्ची बोल रहा हूं, उस फिक्र का क्या करें जो हमेशा दिल में लगी रहती है। गैर हाजिर होकर भी निगरानी रखना, इश्क की लापरवाही में भी फिक्र है। अगर फूल कांटे में फर्क हम समझते, बेवफा तुमसे मोहब्बत ना हम करते। जो मालूम होता अंजाम उल्फत, यूं उल्फत से गले न हम लगते। बहुत दे चुके हैं इम्तिहान मोहब्बत, न होती मजबूरियां शिकायत न हम करते। अगर होता मुमकिन तुम्हें भूल जाना, खुदा की कसम मोहब्बत खत न हम लिखते।

जिंदगी की ठोकरें हमें अपने अपनों के रंग दिखाती हैं। वो मुश्किलें ही तो होती हैं जो हमें सही और गलत को पहचानना सिखाती हैं। हम बचपन में स्कूल में पहले कुछ सीखते हैं, फिर इम्तिहान देते हैं, लेकिन जिंदगी में इम्तिहान देकर ही सीख मिलती है। और एक और मजेदार बात आपको बताना चाहूंगा कि जब तक हम अपना सबक पूरा नहीं कर लेते, जिंदगी वही इम्तिहान दोहराती रहती है। इसलिए हुजूर, जिंदगी जो कहना चाहती है उस सदा को सुनिए। अगर वो चैनो करार था तो उदासियां दे गया कहां वो, मेरे तसव्वुर में आके लेता जगह तुम्हारी खुदा कहां वो। जो उसने चाहा तो जी उठा मैं, जो उसने चाहा तो मर गया मैं, जो मौत को लंबी जिंदगी दे मैं ढूंढता हूं दवा कहां वो। न अब शिकायत न कोई गुस्सा, न मिलने की अब वो जस्तजू ही, जो ला के मुझको यहां पे छोड़ा था रास्ता तो गया कहां वो। वो वक्त के हाथों की हो खुशबू तो क्या बताऊं पता मैं उसका, वो वक्त के हाथों की हो खुशबू तो क्या बताऊं पता मैं उसका, अभी अभी तो यही था अभी अभी फिर कहां गया वो। मैं हूं निले आपके साथ, आप सुन रहे हैं कारवां गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर। सुनते रहिए

वक्त हर इंसान को मजबूत बना देता है। वो दिल जो कभी पत्तियों के हिलने से भी घबरा जाता था, आज वही मुसीबत आने पर मुस्कुराकर उसे गले लगा लेता है। दर्द का सबसे गहरा लम्हा जानते हैं कौन सा होता है? जब कोई आईने में खुद के अक्स को देखते हुए भी खुद से कहता है कि अब और आंसू मत बहाए दिल, तेरा दर्द सिर्फ तेरा है और इस दर्द को तू ही मिटा सकता है। जब दिल ये ठान लेता है और खुद ही अपने आंसुओं को पोंछना सीख लेता है, यकीन मानिए दोस्तों, फिर उस दिल को कोई दर्द नहीं दे सकता। अपने दिल के दर्द को मिटाइए और सुनते जाइए कारवाई गजल निलय के साथ। अक्स खुशबू हूं बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। जिस तरह ख्वाब हो गए मेरे रेजा रेजा, इस तरह से कभी टूट कर बिखरे न कोई। अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई।

अक्सर मिलना ऐसा हुआ बस, लब खोले और उसने कहा बस, तब से हालात ठीक नहीं है। मीठा मीठा दर्द उठा बस, मीठा मीठा दर्द उठा बस, सारी बातें खोल के रखो, मैं हूं तुम हो और खुदा बस। तुमने दुख में आंख भिगोई, मैंने कोई शेर कहा बस। तुमने दुख में आंख भिगोई, मैंने कोई शेर कहा बस। वाकिफ था मैं दर्द से उसके, मिलकर मुझसे फूट पड़ा बस। जाने भी दो बात हटाओ, तुम जीते मैं हार गया बस। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निलय और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर। क्या कभी आपने गौर किया है कि हम ताउम्र वैसे ही जीते हैं जैसा दूसरे चाहते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि दूसरे कैसे खुश रहेंगे, और बस यही करने की कोशिश में हम हमारे लिए जी ही नहीं पाते। अपनी तमन्नाएं अपनी हसरतें कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाती हैं या छूटती चली जाती हैं, और हमारी जिंदगी कहीं आगे बढ़ जाती है। तमन्नाओं का वो दौर फिर वापस नहीं आता, इश्क करने का मौसम लौट कर नहीं आता है दोस्तों। इसलिए जो भी है बस यही है एक पल, और इस पल में निले है आपके साथ, आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। क्या बात है भाई, तो राइम हो गया। चलिए फिलहाल अगला नगमा आपको सुनवा देते हैं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
2: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
6: कारवाई

न जाने कब से मुझे इंतजार था उसका, जो कह गया था मेरा इंतजार मत करना। इंतजार हकीकत है। लीजिए आपका इंतजार खत्म, एक बार फिर से नीले हाजिर है लेकर कारवाई गजल। इंतजार हकीकत है, उन सभी बातों का, इंसानों का इंतजार करते जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, हकीकत में पाना चाहते हैं, लेकिन थक हार कर कभी कभी दिल ये भी कहता है कि मैं भूल जाऊं अब यही मुनासिब है, मैं भूल जाऊं अब यही मुनासिब है, मगर भूलना भी चाहूं तो किस तरह भुलाऊं कि तुम हो फिर भी हकीकत कोई ख्वाब नहीं, कि तुम हो कि तुम तो फिर भी हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं। वाकई हकीकत को कैसे कोई छुटला सकता है, वो मंजर जो सामने है उससे कैसे कोई भाग सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी पर कारवाई गजल, में होने लगा आपके साथ। अच्छा था अगर जख्म न भरते कई दिन और, इस कुए मलामत में गुजरते कई दिन और, रातों को तेरी याद के खुर्शीद उभरते, आंखों में सितारे से उतरते कई दिन और, हमने तुझे देखा तो किसी को भी ना देखा, ऐ काश तेरे बाद गुजरते कई दिन और, राहत थी बहुत रंज में हम गम तलबों को, राहत थी बहुत रंज में हम गम तलबों को, तुम और बिगड़ते तो संवरते कई दिन और, राहत थी बहुत रंज में हम गम तलबों को, राहत थी बहुत रंज में हम गम तलबों को, तुम और बिगड़ते तो संवरते कई दिन और।

एक बार फिर से आपकी खिदमत में आदाब पेश कर रहा हूँ। मैं हूँ निले, आप सुन रहे हैं रेडियो बरसवानी पर कारवाई गजल। कहते हैं कि उम्मीद अगर सच्ची हो तो पूरी जरूर होती है, और दर्द में सच्चाई हो, शिद्दत हो, तो की गई दुआ कबूल जरूर होती है। तन्हाइयों से जब वास्ता पड़ता है तब दर्द का एहसास और गहरा हो जाता है। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। बड़े शहरों में बड़ी रौनक होती साहब, लेकिन दिल तन्हा होते हैं। साथ चलते हैं मगर समझ नहीं पाते एक दूसरे को। चार दीवारी में रहते हैं मगर दिल में दीवार लिए हुए रहते हैं। किस तरह भुलाएं हम इस शहर के हंगामे, हर दर्द अभी बाकी है, हर जख्म अभी ताजा है। कुछ और देर का और साथ है आपका और मेरा, अपनी कारवां को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक शेर कर दूं कुछ अर्ज, सुनिए। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे, जहर मिलता रहा जहर पीते रहे, रोज मरते रहे रोज जीते रहे, जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे, जख्म जब भी कोई जहन दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे।

ये कैफियत है मेरी जान अब तुझे खोकर कि हमने खुद को भी नहीं पाया बहुत दिनों से। आपका रेडियो हम सफर निले आपके साथ, आप सुन रहे हैं कारवाएं गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर। वो शाम का मंजर आज भी याद है जब तुमने जाते हुए हल्के से मेरा हाथ दबाया था, कहा था मेरा इंतजार मत करना, कोई हम सफर मिले तो उसका साथ मंजूर कर लेना, बहा देना उन सभी लम्हों को अपनी आंखों से जो साथ गुजारे थे, जला लेना वो पल जिनमें प्यार के वादे किए थे। वो कहता चला गया और मेरे दिल में बस यही ख्याल था कि बेहतर है जिंदगी को हंसकर गुजार दो, सह गए तो मुसलसल आजाब है। अगर फूल कांटे में फर्क हम समझते, अगर फूल कांटे में फर्क हम समझते, बेवफा तुमसे मोहब्बत ना हम करते, जो मालूम होता अंजाम उल्फत, यूं उल्फत से गले हम न लगते। बहुत दे चुके हैं इम्तिहान मोहब्बत, न होती मजबूरियां शिकायत न हम करते। जो मालूम होता मोहब्बत बर्बादी में तुम भी हो, जो मालूम होता मोहब्बत बर्बादी में तुम भी हो शामिल, तो अहद मोहब्बत न हम करते।

आंखों की दहलीज पर सपना आकर बोला आंसू से, आंखों की दहलीज पर सपना आकर बोला आंसू से, घर तो आखिर घर होता है, तुम रह लो या मैं रह लूं। फुरकत का दर्द सह पाना मुश्किल होता है, दिल कहता है मयसर हो जाऊं तो ख्वाब मुकम्मल हो जाए, पर कारवाई मीर को कुछ और मंजूर होता है, तो हम बहते चले जाते हैं उस दर्द के साथ, कभी दर्द को जताते हुए कभी दर्द को छुपाते हुए। अपने रेडियो हम सफर नीले के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल रेडियो बिस्वानी पर। अंदोह से हुई न रिहाई तमाम शब, मुझ दिल जले को नींद न आई तमाम शब, चमक चली गई थी सितारों की सुबह तक, कि आसमां से दीदा बराई तमाम शब, जब मैंने शुरू किस्सा किया आंखें खोल दी, यकीनी थी मुझको चश्म नुमाई तमाम शब, वक्त सिहा ने देर में कल यावरी सी की, थी दुश्मनों से इनकी लड़ाई तमाम शब, तारे से तेरी पलकों पे खतरे अश्क के, दे रही है मीर दिखाई तमाम शब।

आप हैं अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। कारवाई गजल अब अपनी आखिरी पायदान तक आ पहुंचा है। कुछ ही देर में हम और आप जुदा हो जाएंगे। जिंदगी में भी जब हम किसी बात को लेकर किसी से नाराज हो जाते हैं, तब आमतौर पर कोई हमें कुछ समझाता है और हम भी कुछ बातों से सहमत हो जाते हैं, और कभी कुछ बातों से असहमत होते हैं, नहीं मानते, नहीं अग्री करते, और फिर अपने दिल की बातों को बयां करते हैं। ऐसे समय में खुद ही खुद को समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या सही है और हमें क्या करना चाहिए। जिंदगी की दास्तां में हम आगे बढ़ जाते हैं और सही गलत की पहचान के लिए दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जबकि आपके लिए सही फैसला सिर्फ आप ही ले सकते हैं। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है कोई तो आएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूं, अगर वो आया तो किस रास्ते से आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा।

अपनी अपनी खूबियां और खामियां भी बांट लें, शोहरतें तो बांट लें, रुसवाइयां भी बांट लें, बांट ली आसानियां दुश्वारियां भी बांट लें, आओ अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी बांट लें। बंट गया है घर का आंगन, खेत सारे बंट गए, क्यों ना बंजर जमीन और परतियां भी बांट लें। प्यार मोहब्बत के साथ जब दर्द भी बांट लिए जाए तो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है, दिल से दिल तक की बात को समझा जा सकता है तब। और इन्हीं बातों के साथ वादा किए जाता हूँ कि हमारी फिर मुलाकात होगी अगले संडे, और हम फिर जुड़ेंगे यादों की कारवा में, गजलों की कारवा में। अपने होठों की मुस्कान को बनाए रखिएगा, दिल की धड़कन को थाम के रखिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो ब्रिस्वानी, अपने रेडियो हम सफर नीले के साथ। फिलहाल जाने की इजाजत दे दीजिए, खुदा हाफिज, नमस्कार।

आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मूड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

सोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनु
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जीवन बहुत अनमोल है ये जीवन, और इस जीवन की सच्चाई को ढूंढने में, यानी हम क्या हैं, क्यों हैं और कहां से आए हैं, ये जानने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम इस सफर में, जीवन आधार में, अपनी जिंदगी के पर्पस को ढूंढने की ही कोशिश कर रहे हैं, शायद मिल जाए हमें। और ये पर्पस जो है, ये किसी जाति धर्म में नहीं बंटता, ये पर्पस जीवन का पर्पस कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, ये एक ऐसा पर्पस है जो हर मनुष्य के मन में है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मनुष्य के मन में है, अगर वो अपनी खोज में है तो। तो अगर आप भी अपनी खोज में निकल पड़े हैं तो बस हमें सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जानने और समझने को आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ, और जीवन आधार का ये सफर इस अगले गीत के साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी।

दोस्तों कहते हैं कि दुश्मनों से हमेशा बच के रहिए, आपने भी जरूर सुना होगा। लेकिन देखा जाए तो दुश्मन या जो लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं वो होते कौन है? वो हमारे अपने ही होते हैं। देखिए, बाहर वालों को नहीं पता कि आपके खिलाफ साजिश क्यों करनी है, उन्हें क्या मिलने वाला है। कोई चक्रव्यूह रचना करके, कोई साजिश करके उन्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर किसी को कुछ मिलना है तो आपके अपनों को ही। और इसीलिए कहते हैं कि कितने भी आप किसी रिश्ते को लेकर इमोशनल क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपनी एक आंख हमेशा खुली रखिए कि उस रिश्ते से भी अगर धोखा मिला तो आप क्या करेंगे। कभी कभी बहुत करीबी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। इसलिए एक जितना भी भरोसा किसी रिश्ते पर हो, एक जो है वो निगाह उस रिश्ते पर ऐसे जरूर रखिए जो उस रिश्ते की कमियों को आपको दिखा पाए। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

है और जीवन की सच्चाई को, जीवन के आधार को, जीवन के बेस को हम हर रोज सुबह मिलकर साथ में ढूंढते हैं। आज भी एक यही कोशिश इस सफर में, और अभी इस अगले गाने के साथ इस कोशिश को अंजाम देंगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी पर मेरे साथ जीवन आधार।

सदाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM और हमारा आपका ये जो साथ है जीवन आधार पर, ये हर साथ के साथ, हर दिन के साथ और भी मजबूत हो रहा है।

गाने के बाद एक बार फिर से आप हैं सुताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। दोस्तों, ये है सफर जीवन आधार का। जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है, जीने की वजह भी देता है और जीने की वजह छीनता भी है। कभी कभी जीवन में वो दौर आता है जो शायद आप कहते हैं कि आपकी जिंदगी का, आपके जीवन का सबसे बुरा दौर है, लेकिन ये वो दौर होता है जब आपको जीवन में सबसे अच्छा मिलने वाला होता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए ना सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, और जब आप उस दौर से गुजर रहे होते हैं उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको समझ नहीं आता है। लेकिन उसकी मर्जी अगर हम और आप समझ लेंगे तो फिर हम और आप भी परमात्मा नहीं हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, वो हमें समझ में नहीं आता, और फिर वो हमें कुछ ऐसा देता है कि हमें लगता है कि शायद हम तो इस लायक थे ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत बुरे दौर से गुजरना होता है जब कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला होता है। आइए उसी दौर के नाम जो हमें हिलाकर रख देता है, हमें पूरी तरह से बेबस कर देता है, उस दौर के नाम सुनेंगे अभी अगला गीत, क्योंकि ये वो दौर भी है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ।

गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ए

जीवन आधार। जी हाँ श्रोताओं, यही सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। जीवन आधार हमारा वो सफर है जहाँ पर आप जीने की सही वजह ढूंढ पाते हैं, अपने जीवन का डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीज हमें परेशान करती है वो ये कि हम इस पृथ्वी पे आखिर हैं क्यों, यानी हम क्यों हैं यहाँ, हमें क्या करना है। तो बस उसी जीवन को ढूंढने की हमें कोशिश करते हैं जीवन आधार में, और ऐसी ही कोशिश आज एक बार फिर से हम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए भी बढ़ते हैं आगे इसी सफर में इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओं, ये था जीवन का एक और सफर रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर जीवन आधार। इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे थे। कल फिर से इसी सफर में आपसे फिर से मिलूंगी जीवन की कुछ बातों और जिंदगी की कुछ गहरी और बहुत गहरी सच्चाइयों को लेकर। लेकिन अब आज के सफर से इजाजत चाहती हूँ और इस वादे के साथ कि कल लौटूंगी और फिर से जीवन आधार में हम अपनी ही जिंदगी को खोजने का प्रयास करेंगे। आज के सफर से अब दीजिए विदा। नमस्कार।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे श्रोताओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी कॉफी गर्म है, अलार्म बंद हो चुका है और मंडे से दोस्ती करने की कोशिश जारी है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी और अगले एक घंटे तक हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऑस्ट्रेलिया की कुछ अनोखी बातें, थोड़ा सा बॉलीवुड, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारे पॉजिटिव वाइब्स के साथ। आप सभी चांदनी के साथ सुन रहे हैं चांदनी का सफर। तो आइए सबसे पहले इस गीत से अपने इस सुबह को बेहतरीन बनाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

स्वागत है आप सभी का। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी चांदनी के साथ। वैसे दोस्तों, मंडे को सरवाइव करने के ना तीन तरीके हैं। सबसे पहला कॉफी पियो, दूसरा स्माइल करो और तीसरा याद रखो कि फ्राइडे जो है सिर्फ 5 दिन दूर है। वैसे दोस्तों, आज सुबह घर से निकलते वक्त सबसे पहले काम क्या किया आपने? सच सच बताना, फोन चेक या फिर कॉफी चेक? जल्दी से मैसेज करके बताएं और फिर एंजॉय कीजिए इस गीत को। सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए एक छोटा सा वेदर अपडेट जान लेते हैं। साउथ ईस्ट क्वींसलैंड के कोस्टल एरियाज में पिछले कुछ दिनों से समुद्री लहरों ने काफी जोर दिखाया है। अथॉरिटीज ने बीच में जाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप सभी बीच की तरफ जा रहे हैं तो लेटेस्ट लोकल अपडेट जरूर चेक कर लीजिएगा। और ध्यान रहे, मॉर्निंग शो के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ब्रॉडकास्ट से 15 से 20 मिनट पहले आप वेदर और ट्रैफिक अपडेट्स फिर से चेक जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, रात भर में चेंज हो सकती है। तो आप और अपडेट्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आइए सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

स्वागत है एक बार फिर से मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं। एक बार आज आप सभी को फिर से मैं कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या सुनना चाहते हैं? तो सुनिए। क्या आप जानते हैं कैंगरू और ईमियू में एक बड़ी खास बात है, ये दोनों जो है आसानी से पीछे नहीं चल सकते और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें अपने नेशनल कोट ऑफ आर्म पर जगह दी है। इसका मैसेज ना बहुत खूबसूरत है, जिंदगी में पीछे नहीं हमेशा आगे बढ़ते रहो। वैसे तो दोस्तों मंडे मॉर्निंग पर हम सब ना थोड़े थोड़े कैंगरू जैसे हैं। सोचिए कैसे कैसे। देखिए, पीछे हम लोग वीकेंड की तरह जाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी जो है हमें आगे ही ले जाती है। वैसे एक और बात याद आई, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल मोटो ना ऑफिशियली ये नहीं है, लेकिन लगता जरूर है, नो रिवर्स गियर। क्योंकि दोस्तों कैंगरू और एम्यू जो ऑस्ट्रेलिया के कोट ऑफ आर्म पर बने हैं, आसानी से जो है पीछे नहीं चल सकते। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल सिंबल में ना इसे एक लाइफ लेसन इसमें छुपा रखा है। क्या रखा है? वो ये कि जो हो गया उसे छोड़ो, नजर आगे रखो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। है ना इंटरेस्टिंग? तो दोस्तों हमें भी यही चीज सीखनी चाहिए। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक दुखद खबर की बात करते हैं जो कि नॉर्थ क्वींसलैंड से है। फार नॉर्थ क्वींसलैंड से जहां पर ग्रेट बैरियर रीफ के पास स्पीयर फिशिंग कर रहे एक व्यक्ति जो कि 39 ईयर्स के थे, उनकी शार्क अटैक के बाद मौत हो गई, यानी कि शार्क ने उन पर अटैक किया है। अथॉरिटीज मामले की जांच कर रही है और लोकल वाटर्स में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की अपडेट। आईएसी के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गीत रेडियो ब्रिस्वानी में।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो दोस्तों चलिए थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। चलिए सोचिए, अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिल जाए तो क्या लेंगे, यानी आपको कोई सुपर पावर देना चाहे तो आप उस सुपर पावर में क्या मांगेंगे, क्या लेंगे? नंबर वन, ट्रैफिक गायब करने की पावर, मंडे स्किप करने की पावर, या फिर कॉफी को अल्टीमेट फ्री करने की पावर? मुझे लगता है मेरे सारे श्रोताओं की जो दिलचस्पी है ना, वो थर्ड वाले में है, यानी कि कॉफी को बिल्कुल फ्री करने की पावर, है ना? सही कहा ना? क्योंकि दोस्तों कॉफी का होना बहुत जरूरी है, बाकी तो चीजें देखते रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों एक बात जरूर याद रखिए, हर सुबह एक नई शुरुआत है। कल की गलतियों को आज का बोझ मत बनने दीजिए। मुस्कुराएं, सेफ ड्राइव कीजिए और अपने दिन बेहतरीन बनाएं। मैं हूं आपकी दोस्त चांदनी और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर। और अब दीजिए मुझे इजाजत और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और पीते रहें साथ में कॉफी। टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सदाक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एएम। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कैलिफोर्निया में मंडराया केमिकल लीक का खतरा, 40,000 लोग होंगे विस्थापित। कैलिफोर्निया में केमिकल फैक्ट्री के खराब वॉल्व ने लाखों जिंदगियों और 6 शहरों की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। ऑरेंज काउंटी की इस फैक्ट्री से मेथाक्राइलेट नाम के बेहद खतरनाक और आग पकड़ने वाले केमिकल का रिसाव हो रहा है। खराबी इतनी बड़ी है कि रिसाव को पूरी तरह बंद करना नामुमकिन हो चुका है। अब डर इस बात का है कि अत्यधिक दबाव या गर्मी के कारण ये स्टोरेज टैंक कभी भी फट सकता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बिना वक्त गवाए लगभग 40,000 लोगों को फौरन अपने घर खाली करने का सख्त आदेश जारी किया है। व्हाइट हाउस शूटर ने खुद को बताया असली ओसामा बिन लादेन, ट्रंप को दी थी धमकी। व्हाइट हाउस के एक सिक्योरिटी चेक प्वाइंट पर गोली चलाने के शक में जिस आदमी को मार गिराया गया, उसने दावा किया था कि वो असली ओसामा बिन लादेन है और उसने ऑनलाइन पोस्ट करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की इच्छा जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध, जिसकी पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के रूप में हुई थी, उसने ये दावा और धमकियां सोशल मीडिया पर दी थी। पाकिस्तान में बड़ा ट्रेन धमाका, क्वेटा के पास फिदियान हमले में 24 की मौत, 100 से अधिक घायल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया। क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए इस शक्तिशाली विस्फोट में कम 24 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भोपाल में हुआ त्विशा का अंतिम संस्कार, भाई मेजर हर्षित ने दी मुखाग्नि। नोएडा से भोपाल में विवाह के बाद आई 31 वर्षीय मॉडल और एक्ट्रेस त्विशा शर्मा को संदिग्ध मौत का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है। अब इस हाई प्रोफाइल प्रकरण में सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए भोपाल एम्स में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये प्रक्रिया की गई, जिससे मौत के कारणों को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब तलाशे जा सके। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करीब 3 घंटे चली के बाद एम्स से आई विशेषज्ञों की टीम वापस रवाना हो गई। इसके बाद स्वजनों को त्विशा की बॉडी सौंप दी गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जल्द होगी ट्रेड डील भारत संघ रिश्ते पर मार्को रूबियो का बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत के बाद रूबियो ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद और लंबे समय तक टिकाऊ होगा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: स्वागत है आप सभी का रेडियो मेजबानी पर। दोस्तों अमिता तो नहीं है, अमिता छुट्टी पर है और मैं आपका साथ रहूंगा तकरीबन 3 हफ्ते तक। ठीक है दोस्तों, और आप तो हमारे साथ देंगे जरूर, मुझे पूरा विश्वास है। तो चले कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए आप सभी का स्वागत है, प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और सबसे पहले देखते हैं हमारी इधर ट्रैफिक की ओर क्या हो रहा है। दोस्तों अभी अभी आया है पैसिफिक मोटरवे 8 माइल प्लेन्स मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ है, 1 लेन ब्लॉक्ड नॉर्थ बाउंड टूवर्ड्स ब्रिस्बन सिटी। देखिए दोस्तों बारिश हो रही है, रिमझिम, थोड़ा बचाकर गाड़ी चलाइए आप। ओके, और स्पेशली जो हमारे नया जो ड्राइवर्स हैं, अभी आप फुली ट्रेन नहीं हो तो डोंट थिंक लाइसेंस मिल गया है और आप नहीं, अभी आपको बहुत कुछ हासिल करना है। माइंस रोड सनी बैंक क्रैश नॉर्थ बाउंड जो था, जो हुआ था, ये साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। और क्या है, ब्रूस हावे कलंगा कंजेशन नो ब्लॉकेज साउथ बाउंड टूवर्ड्स ब्रिस्बन, ये थोड़ा पहले आया था, आई डोंट नो अभी है या नहीं है। खैर चलो, ये रहा हमारा रोड रिपोर्ट। और बारिश, जी हाँ, अभी भी थोड़ा कुछ बारिश हो रही है दोस्तों। शावा ओ टू कहा गया है, आज का जो मिनिमम था 18, मैक्सिमम 24, कल के लिए मिनिमम 18 एंड 24, सेम इज यस्टरडे, सेम इज टुडे, कल आज ही की तरह रहेगा। लेकिन कहा गया है कि अपवर्ड्स ऑफ 7 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, ठीक है। और फिर उधर वेंसडे को 18 एंड 24 और 1 to 15 मिलीमीटर शावर्स रेन, क्या है शावर्स पॉसिबल ऑन थर्सडे, पॉसिबल स्टॉर्म 18 एंड 23, 6 to 25 मिलीमीटर ऑफ रेन। फ्राइडे को पार्टली क्लाउडी, 13 एंड 21 रहेगा दोस्तों, 1 मिलीमीटर। फिर सैटरडे संडे, देखिए वीकेंड आपके लिए स्पेयर कर दिया गया है, वीकेंड साफ रहेगा दोस्तों, बारिश नहीं होगी। सैटरडे को 14 एंड 21 रहेगा, संडे को 13 एंड 21, ठीक है। तो ये रहा हमारा वेदा यहाँ ब्रिस्बन का। और चलो फिजी पर कुछ ध्यान देते हैं। हैवी रेन अलर्ट कंटिन्यूज अक्रॉस फिजी, वेदर अथॉरिटीज से सेवरल एरियाज में एक्सपीरियंस मोर रेन बट स्कूल्स रिमेन ओपन फॉर नाउ। रेजिडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड टू स्टे अलर्ट स्पेशली इन फ्लड प्रोन एरियाज। एक्सक्यूज मी, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम कंटिन्यू इन पार्ट्स ऑफ सुवा नसोरी कॉरिडोर, रिपेयर वर्क हैज बीन स्लोड बाय बैड वेदर एंड सम हाउस होल्ड्स आर स्टिल फेसिंग लो वाटर प्रेशर और इंटरमीडिएट सप्लाई। और गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर फैमिलीज, द फिजी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मेजर्स टू हेल्प रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग लिविंग कॉस्ट इंक्लूडिंग असिस्टेंस रिलेटेड टू बस फेयर्स and electricity expenses. और फ्यूल सिचुएशन कहाँ है, क्या है वहाँ पर, फ्यूल सिचुएशन रिमेन स्टेबल डिस्पाइट ग्लोबल फ्यूल प्राइस प्रेशर। अथॉरिटीज से फिजी हैज सफिशेंट फ्यूल स्टॉक एंड स्केड्यूल शिपमेंट टू मेंटेन नॉर्मल सप्लाईज थ्रू मे एंड जून। ड्रग क्राइम पर तो फाइट चल ही रहा है दोस्तों, और बस और क्या। देखिए क्विज है, फिजी इज नोन एज अ सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ए ट्रू या फॉल्स? चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग नहीं कॉल करोगे, इट्स ट्रू। गॉट अ नेगेटिव थिंग टू से, ओ सॉरी, निकल गया, अब तो निकल गया, अब क्या करेंगे, वापस तो नहीं ले पाऊंगा ना। खैर देखिए दोस्तों, जब फ्लड हो ना, आपको रास्ता दिखाएगा, इसे लगेगा कि नहीं रास्ता बहुत कम पानी है, ठीक है, ये आंखों देखा हाल नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज कभी कभी डेयरिंग बन जाता हूँ। तो मैंने आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट ताकि आपको बता सकूँ, जिंदा हूँ मैं, बता सकता हूँ। जब मैंने गया इस रास्ते पर दोस्तों, एकदम मुझे वाइट मार्किंग सब दिखा रहा था, लग रहा था बहुत कम पानी, लेकिन करंट इतना स्ट्रोंग था दोस्तों कि जब मैं आगे बढ़ा रहा था गाड़ी, बहुत मुश्किल से आगे गया मैं, साइड करंट ज़्यादा था, तो इसका मतलब यही होता है कि डोंट रिस्क इट. ओके, डोंट रिस्क इट. ओके, आगे बढ़ते हैं. और सबसे पहला गीत, गीत तो मैं ही लेकर आ रहा हूँ, बिकॉज अमिता तो नहीं है. खैर, इस गीत को विशाल शेखर और जुबिन गर्ग, बहुत से लोग आए हैं. चलिए सुनते हैं इस गीत को. और अगर आप चाहें और कुछ सुनने को तो मुझे ज़रूर, प्लीज़ डू लेट मी नो.

और उम्मीद है आज सुबह का पहला गीत जो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अभी कह रहे हैं कि देर इज अ कू इन मेकिंग इन अमेरिका, अगर मिड टर्म अगर ट्रंप ने हार गया तो और कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि दे वॉन्ट टू फॉलो क्रिश्चियन रूल एंड टू डू दैट इज द क्राइस्ट हु हैज कम बैक, ऐसे भी कह रहे हैं दोस्तों, इतना लोग इस तरह से मानते हैं। खैर चलो छोड़ते हैं इन बात को, मैंने सोचा साथ साथ में कुछ वर्ल्ड न्यूज़ भी आपके लिए देता रहूं। आप जानना चाहते होंगे कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट अपडेट। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जो टेंशन्स में थोड़ी प्रोग्रेस दिख रही है दोस्तों, और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पॉसिबल पीस डील पर बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन फाइनल जो अग्रीमेंट अभी नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शिपिंग रूट को फिर से नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है दोस्तों। तो चलो इसके बाद में और एक गीत आप सभी के लिए, और प्रीतम अरिजीत सिंह ने गाया है, प्रीतम का म्यूजिक है।

रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों, और मैं जितेश पुरन आपका साथ दे रहा हूं। देखिए, आर्सेनल ने 2025-26 प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिया है। ये क्लब का पहला लीग टाइटल है 2004 के बाद। क्या बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस।

और चलिए दोस्तों देखते हैं कि साउथ एशिया, जी हाँ, साउथ एशिया के कई हिस्सों में गर्मी का जोर जारी है दोस्तों। कुछ इलाकों में टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जिससे हेल्थ और पावर सप्लाई पर प्रेशर पड़ रही है। देखिए, मैंने कहा था ना कि ये भी एल नीनो इफेक्ट बहुत खराब से आ रहा है, बहुत बुरी तरह से, और वेदर पैटर्न्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं दोस्तों। लग रहा है हमारा भी विंटर शायद ठंड हो जाना, आई थिंक सो। देखेंगे क्या होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, रॉकस्टार का गाना है,

थैंक यू दादा एंड विनी, आई नो यू टू आर आवर डाई हार्ड लिसनर्स, आप कभी नहीं छोड़ते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चले दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के जो एनर्जी डिफेंस और क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्रों में नया अग्रीमेंट्स पर काम आगे बढ़ाए हैं, तो चलो अगर ये हो गया तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। और साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दुनिया का सबसे, ठीक है, दुनिया का सबसे बिजी ऑयल शिपिंग रूट या राउट कौन सा है, बताइए, ठीक है। रेडियो मिज़बानी नंबर 04-3003-1701 या 3279-1701 पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अगला जो गीत है, डिया जिंदगी है, जी हाँ।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: और दोस्तों, अगर आज आपका जन्मदिन है तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और अगर वेडिंग एनिवर्सरी हो, किसी तरह का एनिवर्सरी हो, कुछ लोग कहते हैं छुटकारा का एनिवर्सरी हो, चलो जो कुछ भी हो आपके लिए, आप अगर खुश हैं तो हम कहेंगे हैप्पी एनिवर्सरी, ठीक है। खैर, चलिए, किशोर कुमार जो मधुर आवाज में आप सुनेंगे मुकद्दर का सिकंदर का गीत, वो साथ ही रहे।

जी हाँ दोस्तों, 1978 का गाना अभी आपने सुना, मुकद्दर का सिकंदर का गाना किशोर कुमार की आवाज में। म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद ने, आनंद जी, और अनजान ने लिखा था, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में। क्या लिरिक्स है दोस्तों। कहा गया है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड उन अमिताभ बच्चन एक्सप्रेसिंग, जी हाँ, अनफील्ड लव एंड लॉन्गिंग। तो ये रहा एक बहुत ही टची गाना, लेकिन चलो अब सुनते हैं एक गीत जिसे गाए हैं शंकर एहसान लोय और शंकर महादेवन।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म स्वदेश का गाना है। उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर मिलकर इस गीत को गाएं। खेर जी हाँ। अजय थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। दोस्तों अभी लास्ट थर्सडे को हम जिक्र कर रहे थे कि भाई अजय किधर गया, लेकिन आप बहुत व्यस्त रहते हो, स्टिल यू कॉल्ड मी, थैंक यू सो मच।

और हाँ दोस्तों, जब भी मैं कैंपिंग में निकलता हूँ, कहीं दूर रास्ता पर जाता हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कई बार इस गीत को मैं सुनता हूँ। बहुत फील फ्री गाना है दोस्तों, शायद आपको भी ये गीत अच्छा लगता होगा। देखिए दोस्तों, एक जो अगला गीत नहीं, एक क्विज है आपके लिए, ठीक है। और ये जो गीत है उन परिंदों की बात करता है जो सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि इंसान के ख्वाबों में उड़ता है, ठीक है, जहां जिंदगी को ओपन यानी खुला छोड़ दिया जाता है और हर सफर एक नई आजादी बन जाती है, ठीक है, हर आजादी बन जाता है और एक नई आजादी, ठीक है। तो कौन सा ये गीत है बताइए, गेस करिए दोस्तों, ठीक है। नंबर है 04-3003-1701 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, या तो स्टूडियो का लाइन है, जी हाँ, 3279-1701। थोड़ा सोचना पड़ा

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service।
3: और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के बाद में आप सताक्षी के साथ हो जाएंगे। और आज का लाइनअप इसी तरह है, 11 बजे से आप संदेश के साथ और फिर 3 बजे से निविया के साथ आप हो जाएंगे, ठीक है? तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। जब वी मेट का गीत है दोस्तों, जब वी मेट में बहुत अच्छे अच्छे गीत थे।

और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो आपको मदहोश कर देगा मेरे ख्याल में। और ये गाना जो है एक पल के लिए जो जी रहे हैं हम उसी के लिए, शायद ये हमारे लिए अभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सुबह है, लेकिन बहुत जगह पर जो हमारे लोग सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, आपके यहाँ पर शायद शाम हो रहा होगा, तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, किशोर कुमार का गाया हुआ गीत ये शाम मस्तानी, कटी पतंग का गीत है।

और ये देखिए दोस्तों, धूप और बारिश साथ साथ में, मुझे याद है जब हम छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो हमको बतलाया जाता था कि जंगल में कहीं शेर का शादी है। क्या आपका साथ भी इसे किसी ने कहा था? आई डोंट नो कहाँ से शुरू हुआ था ये बात और क्यों कहते थे। खैर चलो, थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोग मेरे पास मैसेजेस भेज रहे हैं, आप मेरा साथ दे रहे हैं। आप जानते हैं मैं अकेला हूँ आज प्रोग्राम में, अकेला हूँ इस दुनिया में तो नहीं लेकिन इस प्रोग्राम में। और चलिए अगला जो गीत है दोस्तों, एक बहुत ही, क्या कैसे बोलूँ मैं आपसे, बहुत ही रोमांटिक इसमें फील है और शायद इसमें इमोशनल अटैचमेंट भी काफ़ी है। छोटे बच्चे से लेकर, जैसे आरुष का बहुत फेवरेट गाना है, और साथ साथ में बड़े बूढ़े लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है दोस्तों। और कौन सा गीत है, लीजिए सुनिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, फिल्म ब्लैकमेल का गाना है।

जी हाँ दोस्तों, पल पल दिल के पास आप सभी रहते हैं और इस समय 8:16 हो गए हैं। तुम मुझे कभी भी अपनी यादों से जी हाँ मिटा नहीं पाओगे। मैं वो एहसास बन गया हूँ जो दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहेगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये यादें कभी दूर नहीं जाएंगी। कौन सा गीत है बताइए? एक क्विज नहीं है, लेकिन चलो सुना देता हूँ आपको, ठीक है?

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जी हाँ, और देखिए दोस्तों, जो आंखें हैं ना नैन, आंखें जब एक दूसरे को मिलते हैं दोस्तों तो बहुत बातें कर लेते हैं, कभी कभी बिना कुछ कहे हुए बहुत गहरा प्यार भी हो जाता है सिर्फ देखकर, आंख आंखों में, है कि नहीं? कौन सा गीत है आप सोचिए। चलो ये क्विज नहीं है, मैं खाली कह रहा हूँ जो हमारे आंख हैं इनमें बहुत भारी ताकत है दोस्तों। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं, एक बहुत सा प्यारा गीत है दोस्तों, कुछ पुराने गीतों की ओर हम चल रहे हैं।

जी लता जी की आवाज में बहुत प्यारा सा गीत अभी आपने सुना दोस्तों। और आगे बढ़ते हुए अगला जो गीत है रफी साहब और लता मंगेशकर, इन दोनों की आवाजों में आप सुनेंगे दोस्तों। और 25 मिनट हो गए हैं, 8 बजकर हमारा 7 रहेगा 9 बजे तक।

यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। चलो पहले भी कुछ नज़रों पर हमने कुछ गीत आपके लिए पेश किया था दोस्तों, और ऐसे में चलो एक हमारे बहुत ही प्रिय लिसनर ने एक गीत भेजा है आप सभी के लिए सुनने के लिए।

जी हाँ दोस्तों, पकीज़ा का गाना यानी तीर नज़र देखेंगे। देखो इसमें यही कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, आप यू कैन ओनली अंडरस्टैंड बाय माय लुक्स। जी हाँ, जो जख्म है अंदर मेरी आप कोशिश करेंगे। जी हाँ, जिन्होंने मोहब्बत में सब कुछ खो दिया है, आई कांट से दैट इन वर्ड्स, ओनली इन माय द वे माय आईज टेल यू। तो ये था एक पकीज़ा का गाना दोस्तों, और ब्यूटीफुल मूवी पकीज़ा। इफ़ यू हैवन्ट वॉच्ड इट प्लीज़ डू वॉच इट, बहुत प्यारा बहुत प्यारी मूवी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और इस बार किशोर कुमार के साथ हम फिर से हो जाएंगे, और ये प्रेम पुजारी का गाना। हाँ, आपको पता चल गया, मैं जानता हूँ आप लोग बड़े होशियार हो। ऑनेस्टली आई नो दैट, बिकॉज आप लोग कॉल करते हो तुरंत बता देते हो मुझे, या कोई ऐसा गीत हो अगर मैं ढूंढ रहा हूँ आप मुझे बता देते हैं कि शायद इनका लाइन, इस गीत का लाइन ऐसा ही होगा। खैर चलिए, प्रेम पुजारी का गाना है किशोर कुमार की आवाज़ में, फूलों के रंग से।

लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम कितने बार आए हमको मालूम नहीं, और पहले क्या छोड़ा था हमें याद नहीं जी, तो कैसे होगा बताइए। चलिए तो गीत है, देखिए किसी ने एक लेख भेजा मेरे पास, द वर्ल्ड इज अ गार्डन ऑफ गॉड, लेट अस मेक इट ब्यूटिफुल एंड ब्राइट, सो लेट अस कीप अवे फ्रॉम ऑल वायलेंस इन थॉट इन वर्ड एंड डीड। सही बात है, दुनिया में तो सब ऑपोजिट हो रहा है कि नहीं? जी हाँ। और तो चले आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन साथी का गाना है एक बार फिर किशोर कुमार से आप सुनेंगे दोस्तों, और मेरे दिल दिल के चैन आए। जी हाँ जी हाँ, ये दुआ कीजिए।

ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। अभी आपने सुना दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहे हम, और टाइम भी बहुत ज़ोर से जा रहा है। शायद तीन गाना और आपके लिए, तीन या चार, देखेंगे क्या होता है। लेकिन आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप ब्रिजवानी का साथ हमेशा देते रहे, ठीक है। चलो अगला जो गीत है, कलाकार का गाना है।

देखिए, आप लोग जब रिक्वेस्ट करते ही हैं तो फिर, अरे जतीश भाई एक अच्छा सा रफ़ी का गाना बजा दो। अरे यार, ये बड़ा भारी चैलेंज हो जाता होता है हमारे लिए। खैर चलो, मैं क्या कहूँ। ठीक है दोस्तों, आप तो रिक्वेस्ट किए हैं इसके लिए, बहुत अच्छा। लेकिन आपने कहा जो गीत अगर मुझे पसंद हो रफ़ी साहब का, और उसको बजा दो। तो चलो, जो गीत मैंने सोचा है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं फाइंड आउट किया है। गीत का वो यही बोल है कि पूरे होश और समझ होने के बावजूद मैं तुम्हारे इश्क में दीवाना बन गया हूँ। ना मैं खुद को रोक पाया, ना अपने जज्बात को समझ पाया। ये मोहब्बत ऐसी है जो होश में होते हुए भी पागल बना देती है दोस्तों। ठीक है, तो चलो सुनते हैं। एक क्विज नहीं है, खाली डिस्क्रिप्शन दिया था कि कौन सा गीत मैंने चुना है आपके लिए दोस्त। जो रिक्वेस्ट किया है आपने, कि आपका रिक्वेस्ट था कि मैं बजाऊं कुछ एक ऐसा गाना, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ठीक है,

तो उम्मीद है दोस्त ये गीत आपको पसंद आया होगा। मुझसे कहा गया है, नहीं कहा गया नहीं, लेकिन मैं एक सवाल किया था, गीत एक क्विज था प्रेम जी, जो गीत आपने भेजा वो चलो गीत ठीक है, लेकिन जो मैं खोज रहा था वही वो गीत नहीं था। कौन सा गीत मैंने सोचा था, ये गीत उन परिंदों की बात करता है जो सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि इंसान के ख्वाबों में उड़ता है, जहां जिंदगी को ओपन चैलेंज यानी खुला छोड़ दिया जाता है और हर सफर एक नई आज़ादी बन जाता है। ठीक है, कौन सा गीत था? प्रॉब्ली वॉज वेरी डिफिकल्ट आई थिंक, बट फिर भी चलो बजा देता हूँ। इसी के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, आप सभी ने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा लगा, और कल भी साथ देना, मैं 3 हफ्ते तक अकेला हूँ इस दुनिया में अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नमस्कार, खुदा हाफिज़।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। देखिए भाई, हमारी दुआ हमेशा, हर रोज, हर सुबह आपके लिए यही होती है, सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, कि आप सबकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, सब कुछ बढ़िया रहे और जबरदस्त रहे। अब कितनों के साथ मेरी ये दुआ लग पाती है भाई, वो तो ईश्वर ही जाने, मगर हाँ, विश तो हमारी यही है। और आपसे भी यही कहूंगी कि हर रोज सुबह उठते ही सबके लिए विश मांगा करिए, है ना। क्या पता कब किसी को बहुत जरूरत हो आपकी प्रार्थनाओं की और वो प्रार्थना उस तक पहुंच जाए, है ना, बात बन जाएगी बॉस। तो चलिए इसी विश के साथ कि सबकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे और सबकी जिंदगी में बहुत बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो एकदम निल हो जाएं, इसी विश के साथ शुरू करते हैं आज का इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं सताक्षी इस सफर में आपकी हम सफर हूं, और मेरे साथ हैं इस मॉर्निंग के बहुत ही खास गाने। तो चलिए शुरू करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ आज का सफर। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।

छापन सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी पर, और आज भी आपके साथ बहुत ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन ये वक्त है उन्हें विश करने का जिनके लिए ये वक्त बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, अगर आपके लिए ये वक्त इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज आपका बर्थडे है, सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और आई विश कि यार सब कुछ जिंदगी में बढ़िया रहे, जबरदस्त रहे और आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज उनकी जिंदगी में कुछ खास होने वाला है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। और जिनके लिए दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, बॉस शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं आपको। चलिए आगे चलते हैं इस अगले ट्रैक के साथ, सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। बहुत ढेर सारी बातें, बहुत ढेर सारी मस्ती आगे भी जारी रहेगी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT, यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

ऐसे बेहतरीन साथ पर जिसके साथ ये सफर और भी खास और हमारी मॉर्निंग और भी स्पेशल हो रही है। ऐसे हम सबकी जिंदगी में दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले लोग होते हैं, एक वो जिनका कॉम्प्लीमेंट हमारा दिन बना देता है और दूसरे वो जिनका कॉम्प्लीमेंट हमारी पूरी जिंदगी बना देता है। ये दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये इनके कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं स्पेशली, वो मतलब हमें जिंदगी भर इसलिए याद रहते हैं क्योंकि वो अपने कॉम्प्लीमेंट में हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद हमने भी कभी नोटिस नहीं की। एंड सडनली जब वो बातें हमारे सामने आती हैं तब हमें लगता है कि यार हाँ सच में हम में ये भी क्वालिटी है। सो यस, ऐसे लोग और इनके कॉम्प्लीमेंट्स आपकी जिंदगी के लिए बहुत बहुत यूजफुल है। तो कोई है ऐसा जिसने आपको कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये तो मेरी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, या फिर क्या आपने कभी किसी को ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बन जाए? सोचिए और मेरे साथ सुनते रहिए ठापन सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर। फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ।

चलिए बात करते हैं अभी इमोशनल एडिक्शन की। भाई ये ड्रग एडिक्शन सुना था और अल्कोहल एडिक्शन सुना था, ये इमोशनल एडिक्शन क्या होता है? यू नो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक ऐसे रिश्ते में फंसे हैं जिसमें वो रोज सोचते हैं, हर रोज, कि अब हमें इससे बाहर निकलना है। हर रोज सोचते हैं कि इंसान मेरे लिए सही नहीं है, उस इंसान की खामियां उनको रेगुलर नजर आ रही हैं, बट स्टिल वो उस रिश्ते से निकल नहीं पाते। अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि हम निकलना तो चाहते हैं, रोज कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस बंदे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। यू नो, ये वो स्टेज होती है जहां कोई बंदा, जिसे आप प्यार कहते हैं कि आप उस इंसान से प्यार करते हैं, नहीं, वो बंदा जो है वो सिर्फ आपके दिल से नहीं जुड़ता, वो आपके ब्रेन और आपके नर्वस सिस्टम से भी जुड़ जाता है। वो प्यार नहीं, वो एक टॉक्सिक रिलेशन है जिसने आपको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर दिया है। तो ऐसे जो एडिक्शंस हैं जिसमें आपको ये लगता है कि आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे और आपका ब्रेन फिर बहुत सारे बहाने आपके लिए क्रिएट कर देता है उसको ना छोड़ने के, अगर मैंने इसको छोड़ दिया और मुझे कोई और मिला नहीं तो, या फिर अगर मैंने इसको छोड़ दिया और इसके साथ कोई और जुड़ गया तो। बहुत सारी ऐसी बेकार की बातें जो शायद आपको सोचनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन वो सारी इमेजेस आपके आगे क्रिएट करता है एंड यू स्टिल बिलीव कि आपको उसी बंदे के साथ रहना है। आप उस क्योस के, आप उस टॉक्सिक रिलेशन के आदि होने लगते हैं। सो इस रिलेशनशिप से, इस तरह के रिश्तों से जितनी जल्दी हो सके आप बाहर निकल जाएं। ये इमोशनल एडिक्शन आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। फिलहाल मैं आपको आगे लेकर चल रही हूँ एक और गाने के साथ। एंजॉय कीजिएगा और सताक्षी के साथ ही एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 1701।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point.
1: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है. इसे हम बिनकॉइन कहते हैं. अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें. आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में. अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें.
2: पर और अभी हम हैं गानों की हैट्रिक में. जी, आज के 3 बैक टू बैक ट्रैक्स कौन से हैं, आइए सुनते हैं.

गानों की हैट्रिक। जी हाँ, रेडियो प्रस्वानी पर आप इसी सफर को सुन रहे हैं मेरे साथ, और गानों की हैट्रिक में एक और ट्रैक आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ।
1: राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: यार मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

बैक किसी और ट्रैक के इस बार सताक्षी के साथ हैं आप और मेरे साथ सुन रहे हैं इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एफएम पर। कुछ लोगों को देखा है आपने जो खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को नीचे गिराते हैं और दूसरों के लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बिकॉज वो अपने आप को महान और अच्छा बना सकें। यहाँ पर एक ये बात सोचने वाली है कि अगर आप अच्छे हैं तो क्या वाकई आपको ये साबित करने की जरूरत है कि आप अच्छे हैं, क्योंकि जो अच्छा है उसको अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी दुनिया के सामने आ जाती है। और अगर आपको ये दिखाना पड़ रहा है कि आप अच्छे हैं तो फिर तो आप अच्छे नहीं हुए, और वो भी दूसरों को नीचा गिरा के, दूसरों की बुराई करके, उनकी बर्बादी की वजह बनके, ये कैसी अच्छाई है जरा आप सोचिए। चलिए फिलहाल हम आपको आगे लेकर चलते हैं एक और गाने के साथ, इसे एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एफएम।

के साथ इट हैपेंस का ये खूबसूरत बेहतरीन और शानदार सफर इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर, एंड आई रियली होप कि आपको इस सफर में मेरे साथ बहुत मजा आ रहा है। जी हाँ, मॉर्निंग्स की जो बातें हैं वो कुछ ऐसी होती है, अब चाहे आप मेरे साथ करें या सुने या फिर किसी एक ऐसे इंसान के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब है, मुझे लगता है हमारी वो हर मॉर्निंग खास हो जाती है जो हम उस इंसान के साथ बिताते हैं, गुजारते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत बहुत वैल्यू रखता है। फिर चाहे वो आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके हस्बैंड या वाइफ हों, या फिर आपका पार्टनर हो, जो कोई भी, बट एक ऐसा बंदा जिसके साथ आपको लगता है कि ये वक्त सुकून का है, अगर उसके साथ सुबह की शुरुआत होती है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो सुकून आता है। आइए एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ इसी बात पर, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मेरे साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic.